एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। श्रोता, इस समय सुबह के 5:57 और 6 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोतो, 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज

0: बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ₹103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

पुण्य कर्म करते समय इस बात की बहुत संभावना रहती है कि पुण्य के साथ पाप कर्म स्वतः ही हो जाते हैं। जैसे ना चाहते हुए भी पैरों के तलवों के नीचे से कीड़े मकोड़ों का मर जाना, ना चाहते हुए भी हमारे व्यवहार से दूसरों का दिल दुखी हो जाना, लेकिन जानबूझकर पाप कर्म करते समय इस बात की बहुत कम संभावना रहती है कि पाप कर्मों के साथ पुण्य कर्म हो जाएं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन शैली में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाए जिनसे अनजाने में होने वाले पाप कर्मों से मुक्ति मिल सके और इनका कोई भी दोष हमारे जीवन को दुष्प्रभावित न कर सके। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत उपवास की

परंपरा रखी है, सत्संग की व्यवस्था की है, भगवान की पूजा अर्चना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिन की प्रार्थना जोड़ी है, सबके हित के लिए मंगल कामना रखी है।

अपने कर्मों की गति को समझना बहुत ज़रूरी है। विद्वान जन कहते हैं, तीन जीवन तो हमें स्पष्ट ही दिखाई देते हैं। यदि हम सुखी जीवन जी रहे हैं तो अवश्य पिछले जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए होंगे। यदि अब हम अच्छे कर्म पा रहे हैं तो हमारा अगला जन्म भी अवश्य ही सुखमय होगा। और इसी प्रकार यदि हम दुखी जीवन जी रहे हैं तो पिछले जन्म में अवश्य ही बुरे कर्म किए होंगे। और यदि अब भी हम बुरे कर्मों में लिप्त हैं जिनसे लोग दुखी होते हैं तो हमें अगले जन्म में भी दुख भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और सदैव शुभ कर्म करने चाहिए।

शिकायत करते हुए हम ये नहीं सोचते कि केवल इच्छा कर लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए कठिन श्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। शिकायत का ये भी अर्थ है कि हम परमात्मा से स्वयं को ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं, ज़्यादा समझदार समझते हैं। वे जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर हम बीमार हैं तो हम स्वास्थ्य मांगते हैं। अगर हम दुखी

तो हम सुख मांगते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि सुख सुख ही लेकर आए। कई बार तो ऐसा होता है सुख और बड़े दुख लेकर आता है, फिर ऐसा लगता है कि ऐसा सुख नहीं मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता। दुख हमें संघर्ष के लिए तैयार करता है, चुनौतियों का सामना करके हमें सुदृढ़ बनाता है। दुख के बिना जीवन के यथार्थ का अनुभव नहीं होता। दुख ही तो सुख का एहसास करवाता है और हमें परमात्मा के और नज़दीक लाता है।

हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत होती है उतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति अधिक बलवती होती है और हमें यहीं से मार्गदर्शन मिलता है।

प्रभु का प्रेम सदैव उन्हीं लोगों को मिलता है जो हर जनमानस से बिना किसी भेदभाव के प्रेम करता है, उनके सुखों में प्रसन्न और दुखों में दुखी होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुईं और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवठरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

अभी आपने श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ सुना। आज आपने सुना भाग 146। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शुभ प्रयाग। समाचार प्रभात सुबह 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर आप सुनेंगे गाने सुहाने। 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से कानून की बात रिले की जाएगी। सुबह 9:00 आप सुनेंगे ईमेल और फेसबुक पर आई मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग 9:30 से जारी रहेगा। गीतों का कारवां, इस कार्यक्रम का लुत्फ आप उठाएंगे सुबह 10:00 पहाड़ों के सुर, हिमाचली गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महक पंजाब दी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुनो सखी, महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर जिला की चिट्ठी रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से शाम 5:00 तक, और शाम 5:00 समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें 5:00 हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार

0: सुनेंगे। संध्याकालीन भजनों का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। 5:30 पर युवामंच कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नई उड़ान। शाम 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:06 पर सुनिएगा सुरमई सांझ। 6:30 पर मौजा गराइंदिया कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार और आज के संगीतकार हैं अनिल विश्वास। 9:30 पर लोक संगीत और रात 10:00 से 11:00 तक लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे पेश किया जाएगा। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अंतरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीय परीक्षणे अम्ब्लिकल तंत्रस्य पृथक्करण प्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीय परीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करण क्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखंडतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1 भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च माइगोव इति मुक्तमञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मंत्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्री शाहः एक पेड़ मां के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्री शाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सह अपि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमण

0: अनन्तरं नवदिल्ल्या पश्चिमेशियाक्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयम् आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्रनिन्दां कुर्वता विदेशमन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु एकादशभारतीयनागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीयदूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत् सुरक्षाकार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारिभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों

0: का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जाँच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and associated subsystems during the mission. 5 Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anant Bendale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shrest Suraya from Mumbai, and Swarith Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea, and Taiwan among 381 students from 87 countries. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will lead a high-level Indian business delegation to Spain, Belgium and Finland from today till the 17th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the visit aims to strengthen India's economic partnerships with Europe with a focus on trade, investment, technology, innovation and sustainability. In the first leg of his tour, Mr. Goyal will visit Spain today, where he will participate in a business roundtable with the Chamber of Commerce of Spain, CEO OE and ICEX Spain Trade and Investment. The minister will then visit Belgium on the 14th and 15th of this month. Thereafter, Mr. Goyal will visit Finland on the 16th and 17th of this month. The monsoon session of the Chhattisgarh Legislative Assembly begins today. The session will continue till the 17th of July. A total of 5 sittings will be held during the session. During the session, financial business will be transacted and the state government will also introduce around 8 amendment bills. India has declared one day national mourning today as a mark of for respect for Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who passed away yesterday. The national flag will be flown at half-mast on the day of mourning throughout India on all buildings where the national flag is flown regularly. There will be no official entertainment on the day. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Emir Sheikh Hamad bin Khalifa

सुबह सुहानी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। 13 जुलाई दिन है सोमवार और कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। हर रोज़ नई जानकारियां, नई ऊर्जा, नए उत्साह और ढेर सारे मनोरंजन के साथ हम आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा और आपका ये साथ बनाता है हमारे कार्यक्रम को पूरा। क्योंकि हम आपके बिना और आप FM धर्मशाला के बिना अधूरे हैं, तो बातचीतों को देते हैं विराम और सुनते हैं आज का सुविचार। इंसान की सुंदरता की चमक किसी की आँखों तक सीमित रहती है, परंतु उसके गुणों की सरलता आत्मा में बस जाती है। तो चलिए सुविचार के बाद आगे बढ़ते हैं गीत संगीत की तरफ।

जी श्रोताओ, जो बात हमारे होंठ नहीं कह पाते, आंखें ही हैं जो हमारे दिल की बातों को बयां कर देती हैं। जब ये दुखी होती हैं तो छलक उठती हैं कुछ इस तरह से।

श्रोतो, सुबह सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जाने माने फिल्म अभिनेत्री बीना रॉय की आज जन्म जयंती है, उनके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। बीना रॉय हिंदी सिनेमा की ब्लैक एंड व्हाइट युग की एक दिग्गज और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी। 1950 में बनी फिल्म अनारकली, 1963 में आई फिल्म ताजमहल में उनके संजीदा अभिनय के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। 1960 में बनी फिल्म घूंघट में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उनका जन्म आज ही के दिन 13 जुलाई 1931 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ। उनका असली नाम कृष्णा सरीन था। उन्होंने 1951 में किशोर साहू की फिल्म काली घटा से अपने करियर की शुरुआत की थी। 1953 में प्रदीप कुमार के साथ आई फिल्म अनारकली ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद 1963 में मुमताज महल की किरदार, जो 1963 की फिल्म ताजमहल का था, में उन्हें रातों रात और अधिक प्रसिद्धि दिलवाई। फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता प्रेमनाथ से हुई। उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने प्रेमनाथ के साथ मिलकर पीएन फिल्म्स नाम से प्रोडक्शन हाउस बनाया और कई फिल्मों का निर्माण किया। काली घटा 1951, औरत 1953, अनारकली 1953, शोले 1953, मीनार 1954, प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा 1955, इंसानियत 1955, मरीन ड्राइव 1955, दुर्गेश नंदनी 1956, बंडी 1955, मेरा सलाम 1957, घूंघट 1962, वल्ला क्या बात है 1962 और दादी माँ 1960 में उनकी ये प्रमुख फिल्में हैं। तो चलिए, जिस फिल्म से बीना राय सुपरस्टार बनी, उसी फिल्म अनारकली का ये गाना सुनते हैं।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अब बात करते हैं इतिहास में 13 जुलाई के दिन की। सन 1803 में राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया था। सन 1923 में कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में माउंट हिल्स के पास ज़मीन की कीमत बढ़ाने के प्रचार के लिए मकसद से हॉलीवुड लिखा गया। सन 1958 में भारत के लिंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम ATP खिताब जीता। सन 2004 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया और देश के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों के विकास के लिए भारत से और मजबूत संबंधों की इच्छा आज ही के दिन जताई थी। सुबह सुहानी कार्यक्रम में आज विशेष की जानकारियां और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और गाना आप तक पहुंचाते हैं।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और इतिहास में आज विशेष की जानकारियां श्रोताओं आपके संग हम साझा कर रहे हैं। सन 1977 में भारत सरकार ने भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मानों को वापस लेने की घोषणा आज ही के दिन की थी। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा, जो 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे, सन 2021 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। पद्म भूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर का जन्म 1892 में आज ही के दिन हुआ। आठवीं लोकसभा की सदस्य टी कल्पना देवी 1941 में आज ही के दिन पैदा हुईं।

सुबह सुबहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 7:34 और 33 सेकंड हुए हैं और अब जानते हैं आज के समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU गांधीनगर में इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप DFEG की 11वीं बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस बैठक में कई देशों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। मेरा युवा भारत अभियान की शुरुआत 13 जुलाई यानी आज ही से 23 जुलाई के बीच देश भर में की जा रही है। यह अभियान युवाओं के सक्रिय भागीदारी के माध्यम से नशा मुक्त और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच महिला टेस्ट में भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत के करीब पहुंच गई है। भारतीय खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन की व्यापक सराहना हो रही है। अब हाल मौसम का। देश के कई राज्यों में मॉनसून सक्रिय है। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने की खबरें हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम शुभ प्रयाग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं ज्वाला प्रसाद के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
4: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
5: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण

0: में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6-लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6-लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर

0: मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताज़ा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम का गाया ये गीत दिल है तुम्हारा फिल्म से। गीत के वो लिखे समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से कानून की बात रिले की जाएगी और रिले के लिए आपको करना होगा कुछ ही पलों का इंतजार।

0: 2013। श्री मेहुल शर्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के वरिष्ठ सचिव न्यायाधीश इस संबंध में बता रहे हैं।
1: कार्यक्रम कानून की बात में आपका स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं उन कानूनों की जो सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे अधिकारों और हमारी गरिमा से जुड़े हैं। किसी भी समाज की असली पहचान उसकी तरक्की से नहीं बल्कि इस बात से ज्यादा होती है कि वहाँ हर व्यक्ति, खासकर महिलाएं, कितनी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और प्रतिभा से नई ऊंचाइयां छू रही हैं। लेकिन उनके लिए ये भी उतना ही जरूरी है कि कार्यस्थल ऐसा हो जहां वे बिना किसी डर, दबाव और असहजता पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें। सम्मान और सुरक्षा केवल अपेक्षा नहीं बल्कि उनका अधिकार है। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। उन्हीं मूल्यों को और अधिक मजबूत करने के लिए समय समय पर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कार्यस्थलों को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के कार्यक्रम कानून की बात में हम चर्चा करेंगे पॉश एक्ट 2013 यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की, और जानेंगे कि ये कानून क्या है, इसे क्यों बनाया गया, यह महिलाओं को कौन कौन से अधिकार देता है और कार्यस्थलों की क्या जिम्मेदारियां तय करता है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला के वरिष्ठ सचिव न्यायाधीश श्री आर मेहुल शर्मा जी। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: जी। न्यायाधीश महोदय, चर्चा की शुरुआत एक बुनियादी सवाल करते हैं। अक्सर लोग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस शब्द तो सुनते हैं लेकिन इसकी सही परिभाषा क्या है और इसका क्या दायरा है उस बात को नहीं जानते। हमारे श्रोताओं को बताइए कि आखिर क्या होता है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस और किन परिस्थितियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न माना जाता है।
2: सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी होने के नाते सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया कोई भी यौन प्रकृति का व्यवहार सेक्सुअल हरासमेंट कहलाता है। यह केवल शारीरिक छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है बल्कि कई प्रकार के व्यवहार इसमें शामिल होते हैं, जैसे बिना सहमति के छूना या शारीरिक संपर्क करना, यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालना, अश्लील या दोहरे अर्थ वाले मजाक करना, बार बार व्यक्तिगत या अशोभनीय संदेश भेजना, अश्लील तस्वीरें, वीडियो या ईमेल भेजना, किसी महिला के पहनावे या शरीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, घूरना, इशारे करना या ऐसा व्यवहार करना जिससे महिला असहज महसूस करे, प्रमोशन, नौकरी या अन्य लाभ के बदले यौन संबंध की मांग करना। इस प्रकार का कोई भी व्यवहार महिला की गरिमा और सम्मान के विरुद्ध है और एक कानूनी अपराध है।
1: अब जब हमने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अवधारणा को समझ लिया तो हमारे श्रोताओं को अब ये बताइए कि पॉश एक्ट 2013 क्या है और इसे लागू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: पॉश एक्ट का पूरा नाम द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है
1: जी।
2: इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। पहले ऐसी घटनाओं की शिकायत करने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसी आवश्यकता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर वर्ष 2013 में यह कानून बनाया गया। इस कानून के, जैसे कि नाम से ही प्रत्यक्ष है, तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। सेक्सुअल हरासमेंट की रोकथाम प्रिवेंशन, ऐसी घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध प्रोहिबिशन, शिकायतों का त्वरित एवं निष्पक्ष निवारण रिड्रेसल।
1: जी न्यायाधीश महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल और। अक्सर लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर पॉश एक्ट 2013 का लाभ किन किन महिलाओं को मिलता है। क्या ये कानून केवल स्थायी कर्मचारियों पर ही लागू होता है या फिर अन्य श्रेणियों की महिलाओं को भी इसका संरक्षण प्राप्त है।
2: यह कानून प्रत्येक महिला पर लागू होता है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, निजी संस्था में कार्यरत हो,

0: संविदा कर्मचारी हो, प्रशिक्षु इंटर्न हो, अप्रेंटिस हो, दैनिक वेतन भोगी हो, स्वयं सेवक हो, कंसल्टेंट हो या बिना वेतन के भी कार्य कर रही हो, महिला विवाहित है या अविवाहित है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रत्येक महिला को इस कानून के तहत सम्मान सुरक्षा प्राप्त है।
1: न्यायाधीश महोदय, आप बात करते हैं वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल की। आखिर इस कानून के तहत कार्यस्थल किसे माना गया है और क्या इसकी परिभाषा केवल एक कार्यस्थल तक ही सीमित है या इसके दायरे में अन्य स्थान भी शामिल हैं?
0: बहुत से लोगों को लगता है कि वर्कप्लेस केवल कार्यालय होता है, जबकि ऐसा
1: जी
0: नहीं है। इसमें सरकारी एवं निजी कार्यालय, विद्यालय एवं महाविद्यालय, अस्पताल, बैंक, न्यायालय, फैक्ट्री, दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, एनजीओ, कार्य से संबंधित यात्रा, प्रशिक्षण स्थल, आधिकारिक मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग या वर्चुअल प्लेटफॉर्म, अर्थात जहाँ भी महिला अपने कार्य के संबंध में उपस्थित है वह स्थान वर्कप्लेस माना जाएगा।
1: जी न्यायाधीश, एक और बेहद महत्वपूर्ण सा और व्यावहारिक सा सवाल है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी कोई भी घटना होती है तो ऐसी स्थिति में उसे सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए, उसे किसके पास जाना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए और कानून में इसके लिए क्या व्यवस्था उन्हें दी गई है, कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सबसे पहले महिला को डरना या चुप नहीं रहना चाहिए। उसे घटना की तारीख, समय और स्थान नोट करना चाहिए। यदि कोई संदेश, ईमेल, व्हाट्सएप चैट या अन्य डिजिटल साक्ष्य हो तो उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। यदि कोई गवाह हो तो उनका विवरण सुरक्षित रखना चाहिए। अपने वरिष्ठ अधिकारी या इंटरनल कमेटी को लिखित शिकायत देनी चाहिए। यदि महिला स्वयं शिकायत नहीं लिख सकती है तो समिति उसकी सहायता भी कर सकती है।
1: जी, अगर किसी संस्थान में महिलाएं काम कर रही हैं तो पॉश एक्ट 2013 के तहत उस संस्थान को किन विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है?
0: हर नियोक्ता एम्प्लॉयर का ये कानूनी दायित्व है कि
1: जी
0: वह कार्यस्थल को सुरक्षित बनाए, सेक्सुअल हरासमेंट के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे, कर्मचारियों को कानून की जानकारी दे, कार्यालय में पॉश एक्ट से संबंधित सूचना प्रदर्शित करे। यदि संस्था में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो इंटरनल कमेटी का गठन करे, शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। यदि नियोक्ता दायित्वों का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
1: जी पॉश एक्ट 2013 में एक इंटरनल कमेटी का प्रावधान भी है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि समिति क्या होती है, इसका गठन कैसे किया जाता है और क्या कुछ मुख्य जिम्मेदारियां इसकी रहती हैं?
0: जिस संस्था में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हों वहां इंटरनल कमेटी का गठन अनिवार्य है।
1: जी
0: इस समिति में सामान्यतः एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती हैं, कम से कम 2 कर्मचारी सदस्य होते हैं, एक बाहरी सदस्य, एनजीओ या महिला अधिकारों से जुड़े व्यक्ति भी शामिल होता है। इसका उद्देश्य शिकायत की निष्पक्ष जांच करना है।
1: अब एक सवाल और जो शायद श्रोताओं के मन में इस समय आ रहा होगा कि अगर किसी संस्थान में इंटरनल कमेटी बनी ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में महिला किसके पास जाकर शिकायत कर सकती है या न्याय पाने के लिए क्या जो प्रक्रिया है उसे वे अपना सकती हैं?
0: यदि किसी संस्था में 10 से कम कर्मचारी हैं या शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध है तो महिला जिला स्तर पर गठित लोकल कमेटी समक्ष शिकायत कर सकती है। यह समिति जिला प्रशासन द्वारा गठित की जाती है और ऐसी शिकायतों की जांच करती है।
1: जी न्यायाधीश महोदय, अब मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना होती है तो उसे ये शिकायत जो है वो कितने समय के भीतर दर्ज करानी होती है और इसके लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है इस एक्ट के तहत?
0: सामान्यतः घटना से 3 माह के भीतर, 3 महीने के अंतर्गत जो है शिकायत की जानी चाहिए।
1: जी
0: यदि उचित कारणों से महिला समय पर शिकायत नहीं कर पाती है तो समिति अतिरिक्त 3 माह तक का समय दे सकती है। अर्थात आप अगर 3 महीने के अंदर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आपको 3 महीने का और समय दिया जा सकता है।
1: जांच की प्रक्रिया किसी भी शिकायत का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि जांच के दौरान शिकायतकर्ता महिला जो है उसके पास क्या कुछ अधिकार होते हैं और उसे किस तरह की सुविधाएं या संरक्षण दिया जाता है या संरक्षण मिल सकता है?
0: महिला को निष्पक्ष जांच का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है,
1: जी
0: गोपनीयता का अधिकार है, प्रतिशोध से सुरक्षा का अधिकार है, आवश्यक होने पर कार्यस्थल बदलने, अवकाश लेने या आरोपी का स्थानांतरण करवाने जैसी अंतरिम राहत का अधिकार है।

0: जांच पूरी होने के बाद ये साबित हो जाता है कि शिकायत सही थी, तो स्थिति में आरोपी के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है, कृपया हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बताइए।
1: जांच में शिकायत सही पाए जाने पर लिखित माफी, चेतावनी, वेतन कटौती, पदावनति, पद से हटाना, सेवा समाप्ति, पीड़िता को क्षतिपूर्ति जैसी कार्रवाई की जा सकती है यदि घटना भारतीय दंड संहिता IPC या जो अब उसका जो कानून IPC के बाद नया कानून भारतीय न्याय संहिता लाया गया है उसके अंतर्गत अपराध बनता है, तो पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई जा सकती है।
0: जी न्यायाधीश महोदय, अब एक ऐसा सवाल जो शायद कई महिलाओं के मन में होता है, अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न की शिकार हुई है और वो महिला शिकायत करती है तो क्या उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है, इस बारे में ये कानून क्या कहता है?
1: पॉश एक्ट के अनुसार शिकायतकर्ता, आरोपी, गवाह तथा जान से संबंधित जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है।
0: जी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इस विषय में किस प्रकार से सहायता कर सकती है?
1: डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पात्र महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी परामर्श, योग्य अधिवक्ता उपलब्ध करवाना, विधिक अधिकारों की जानकारी देना तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित भागों से समन्वय स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। कोई भी पात्र महिला अपने जिले की DLS से या निकटतम लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन से संपर्क कर सकती है। कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा प्रत्येक महिला का मौलिक अधिकार है। यदि आपके साथ या आपके आसपास किसी महिला के साथ यौन पीड़न की घटना होती है तो उसे कभी भी सामान्य या निजी मामला समझकर अनदेखा ना करें। आवाज़ उठाइए, अपने अधिकारों की जानकारी रखिए और कानून का सहारा लीजिए। एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल का निर्माण केवल कानून का ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: जी, आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में आने के लिए और अपनी बेहतरीन जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आज कानून की बात में हमने विस्तार से जाना पॉश एक्ट 2013 के बारे में। हम समझा कि ये कानून कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। साथ ही ये भी जाना कि हर संस्थान और प्रत्येक कर्मचारी की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं ताकि कार्यस्थल का वातावरण सुरक्षित, संवेदनशील और सम्मानजनक बना रहे। याद रखिए, कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होता बल्कि जागरूकता बढ़ाना, अधिकारों की रक्षा करना और समाज में विश्वास का माहौल बनाना भी होता है। जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेगा तभी हम ऐसे कार्यस्थलों का निर्माण कर पाएंगे जहां सम्मान सबसे बड़ी पहचान होगा। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम कानून की बात से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप कानून की बात कार्यक्रम सुन रहे थे। इसे आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन गए होते। सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ईमेल पर भेजे गए मैसेजेस और फेसबुक पर भेजे गए मैसेजेस को हम पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज का गीतांजलि प्रोग्राम आप सुनेंगे अपने होस्ट एंड दोस्त पवन शर्मा के साथ। और श्रोताओं, अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज FM धर्मशाला में मैसेजेस करके अपने पसंद का गीत सुनने के लिए टाइप कर सकते हैं। सभी श्रोताओं से गुजारिश रहेगी कि जब भी वो हमें मैसेज करें अपने शहर का नाम पता अवश्य लिखें। इसी के साथ आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में भी लिख सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है musicmaildharmshala@gmail.com। तो बहुत सारे मैसेजेस हमें ईमेल के माध्यम से और फेसबुक के मैसेजेस के माध्यम से मिले हैं। सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतनी शिद्दत से हमें मैसेजेस लिखे हैं और अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन से मैसेजेस को हम लें और कौन से नहीं लें, क्योंकि एक ही घंटे का समय है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 गाने ही सुनवा पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सभी के मैसेजेस इस प्रोग्राम में पढ़ पाएँ, सभी का नाम इस प्रोग्राम में ले पाएँ। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन हमें मैसेज लिख रहे हैं। उनके साथ नाम लिखे हैं उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। कोई भी गाना ये हमारे गीतांजलि कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं। फेसबुक पर गोल्डन रेडियो श्रोता संघ हमें मैसेज लिख रहे हैं। राज पैलेस माउथनाथ उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार, इन्होंने भी किसी भी गीत की फरमाइश की है। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं रतन चंद का ज्वाला जी से, जिन्होंने नदिया के पार फिल्म का गाना सुनना चाहा है। गाना है कौन दिशा में लेकर चला रे बटुहिया। तो चलिए उनकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।

जी श्रोताओ, मैसेजेस का ये प्रोग्राम है, मेल से भी हम मैसेजेस ले रहे हैं और अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं कस्बा बराड़ा ज़िला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, ये कोई भी गाना सुनना चाहते हैं। स्वर्ण गिल गांव लोहरगढ़ ठाकुरा वाला से लिख रहे हैं, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, पोतेरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, और ये कोई भी गाना सुनना चाहते हैं हमारे माध्यम से। इसके अलावा एक मैसेज हम मेल से ले रहे हैं, लिख रहे हैं वंदे मातरम जी, प्रिय प्रसारक प्रसारिका दोस्त जी को नमस्कार, और हमारी नमस्कार भी उन तक पहुंच गई होगी, और अनुरोध किया है उन्होंने चांदनी फिल्म का गाना सुनने के लिए, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, तो गाना उनको ज़रूर सुनवाएंगे। ये हैं बनियापारा धमतारी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेवती स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, दीपक मोनू उन्ती, धनशानी कीरत, राय बाधवानी, प्रदीप कुमार साहू और पूरा मखीजा कुटुंब सदस्य। और चलिए इन सभी परिवारगण को हम सुन पा रहे हैं चांदनी फिल्म का यह खूबसूरत सा गीत, और मैसेजेस के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी आशुतोष कुमार जी लिख रहे हैं, संगीत है हर भावना की सुंदर सबसे अभिव्यक्ति, और बहुत ही अच्छी पंक्ति इन्होंने लिखकर हमें भेजी है। बिल्कुल संगीत से ही हमारे दिल के तार जुड़े होते हैं, जब भी कोई भावना कोई भी अभिव्यक्ति हमने किसी तक पहुंचानी होती है तो उसी समय का उसी दौर का गाना जो है उसी तरह का गाना, चाहे वो खुशी वाला हो, गम वाला हो और प्रेम वाला हो, तो हम इस तरह का बजाएं तो अभिव्यक्ति हम अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ हमें प्रिया हिमाचल से लिख रही हैं, गाना वो सुनना चाहती हैं। अनीता राणा ने भी हमें एक गाने की फरमाइश भेजी है। इसी के साथ साथ हमें एक बहुत दूर से फरमाइश आई है, सुदर्शन शाह ड्रीम गर्ल फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ है, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से ये हमें लिख रहे हैं। इनके साथ साथ ये गाना सुनना चाहते हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुणाल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। तो चलिए इन सबको गाना सुनवा रहे हैं ड्रीम गर्ल फिल्म का।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: जी श्रोताओ, बहुत दूर दूर से हमें मैसेजेस लोगों ने लिखे हैं, और अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप हमारा गीतांजलि कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप हमें रेडियो ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, और मैसेजेस करने के लिए आपको मेल करनी होगी musicmail@gmail.com पर। और हमें सुनने के लिए आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं।
1: गुलाबों में सिमटी हिजाबों में लिपटी गुलाबों में।
0: अगला मैसेज हमने लिया है रविंद्र दास का। अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दीजिए, जिला किशनगंज बिहार से ये लिख रहे हैं मोहन दास, आशा देवी, अनुराग मोहन और रविंद्र दास। ये मिलजुल कर कोई भी गाना सुनना चाहते हैं। इसके साथ हम अगली फरमाइश ले रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी का। आपकी फरमाइश सप्रेम नमस्कार लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं आप कैसे हैं। हम बिल्कुल सही हैं। मृत्यु दंड फन से गाना सुनना चाहते हैं, कह दो एक बार सजना। और ये लिख रहे हैं काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदी। अच्छा, ये गाने के बोल इन्होंने लिख के भेजे हैं, साथ ही में इन्होंने

जो गायक हैं उदित नारायण अलका याग्निक जी, उनका नाम भी लिखा हुआ है और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। तो धन्यवाद भी इन्होंने हमें लिखा है और साथ में हम भी इनका धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही सजा कर इन्होंने हमें मैसेज भेजा है। तो चलिए कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति इन्हीं की पसंद पर।

ईमेल और मैसेजेस पर आधारित प्रोग्राम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम का शेष भाग लेकर लौटेंगे 9:30 पर। 9:18 होने को अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और हम लौटेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन 5,000 रुपए।

0: तक भरण पोषण संरक्षण
1: जानकारी लें अधिकार दल
0: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दिन का राष्ट्रीय शोक किया घोषित। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के साथ पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का किया शुभारंभ। चंबा जिला की मणिमहेश यात्रा के दौरान पवित्र डल झील के दर्शन करने के लिए इस बार श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करवाना हुआ अनिवार्य। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कल कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के साथ साथ पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है ताकि लोगों को बेहतर सुलभ और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से आज हरोली में करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अतिरिक्त अस्पताल भवन की आधारशिला रखी जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस अतिरिक्त भवन के बनने से अस्पताल की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और मरीजों व उनके परिजनों को बेहतर व अधिक सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने पंचायतों में घरेलू व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण के लिए यूजर चार्ज वसूलने के निर्णय पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेशवासियों पर आर्थिक बोझ डालने का अभियान चला रखा है, जबकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता को राहत देने के बड़े बड़े वायदे किए थे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के बजाय केवल राजस्व जुटाने के लिए जनता की जेब पर डाका डाल रही है।
3: गांव-गांव में और हर गरीब परिवार पर नए नए दुख देने का कार्य कर रही है। अब इनका नया एक तुगलकी फरमान आया है कि गांव में कचरा कलेक्ट करने के लिए हर घर में 50 रुपए का हर महीने टैक्स वसूला जाएगा। दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो इन्होंने कमिटमेंट चुनाव के समय में की थी वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही। मैं ये बात हिमाचल की जनता के सामने रखना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लिए बहुत कम समय रह गया है, इन तुगलकी फरमानों को वापस लेगी।
2: केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में नए शैक्षणिक सत्र से अनेक नए व रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण बहुविषयक व कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं सहित रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर की गई है। कुलपति ने कहा कि विधि, चीनी भाषा, बौद्ध व तिब्बती अध्ययन, भू विज्ञान, जीआईएस व रिमोट सेंसिंग सहित होटल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके तहत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिला स्तर के विजेता राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करेंगे। राज्य स्तर के विजेता 12 और 13 अगस्त को राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा।

0: एक रिपोर्ट।
1: सिरमौरी लोहिया केवल एक ऊनी परिधान नहीं बल्कि हाटी संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय बुनकरों की अद्भुत हस्तकला का जीवंत प्रतीक है। इसे स्थानीय भेड़ों की ऊन से पारंपरिक करघों पर हाथ से बुना जाता है। इसकी मजबूत गर्माहट और विशिष्ट बुनाई इसे अन्य ऊनी उत्पादों से अलग पहचान देती है। वर्षों से ये लोहिया सिरमौर के ग्रामीण जीवन, लोक रीति रिवाजों और पारंपरिक वेशभूषा का अभिन्न हिस्सा रहा है। GI टैग ये प्रमाणित करता है कि सिरमौरी लोहिया अपनी विशिष्ट गुणवत्ता, पारंपरिक निर्माण शैली और सांस्कृतिक महत्व के कारण जिला की अमूल्य धरोहर है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिला की पवित्र मणिमहेश यात्रा में इस बार कोई भी श्रद्धालु बिना पंजीकरण के पवित्र डल झील के दर्शन नहीं कर पाएगा। यह निर्णय जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सभी से पालन करने का आग्रह किया है ताकि मौसम की स्थिति को देखते हुए किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
2: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार हम लोग मैंडेटरी करेंगे, उसके बिना किसी भी यात्री को उस तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। कुछ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, NDRF की डिप्लॉयमेंट, SDRF की डिप्लॉयमेंट, पुलिस की डिप्लॉयमेंट, उसमें भी वृद्धि की जाएगी ताकि अगर पिछले प्रकार की सिचुएशन वापस होती है तो हम लोग बेहतर स्थिति में हों कि हम उसको टैकल कर सकें।
0: प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही नीतियों और योजनाओं से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शिमला जिला में विशेष प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में लोगों को सांस्कृतिक दलों के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि पात्र लोग योजनाओं का लाभ ले सकें। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुमोदित सांस्कृतिक दलों द्वारा अनुसूचित जाति की अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटकों एवं गीत संगीत के माध्यम से प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही पात्र लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों व चिट्टा जैसे जानलेवा नशों से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बीते 24 घंटों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई। हालांकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज व कल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, OTA रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के 105 पदों पर होगी भर्ती। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, सरकार शुरू करेगी हाई वैल्यू नट मिशन। वहीं दैनिक भास्कर के शब्द है, सरकार का हाई वैल्यू नट मिशन, अखरोट बादाम और चिलगोजा उत्पादन से बढ़ेगी बागवानों की आर्थिकी। दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, अगस्त में होगा हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र, विधानसभा उपाध्यक्ष के साथ चीफ व्हीप का पद भरने की भी हो रही तैयारी। हिमाचल दस्तक लिखता है, 300 मेगावाट बिजली परियोजनाओं के लिए सरकार ने निजी कंपनियों से मांगे आवेदन। मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, कमजोर पड़ने लगा मॉनसून, भूस्खलन से बढ़ाई चिंता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दिन का राष्ट्रीय शोक किया घोषित। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के साथ पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का किया शुभारंभ। चंबा जिला की मणिमहेश यात्रा के दौरान पवित्र डल झील के दर्शन करने के लिए इस बार श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करवाना हुआ अनिवार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे।
4: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग। जी श्रोताओ, बहुत सारे मैसेजेस इस प्रोग्राम में आए हैं और जिनमें से हम सभी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं।

अगला मैसेज है पटेल नगर मलूर से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू का। थोड़ी सी बेवफाई ऑफ फिल्म का गाना ये सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं नरेन नेतम जी, नमस्कार जी, लिख रहे हैं दीवार फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। ग्राम बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से ये लिखने वाले हैं और इनके साथ कुसुम नेताम भी हैं जो मैसेज लिख रही हैं। ममता फिल्म के लिए हमें बहुत सारे मैसेज मिले हैं, वो हम पढ़ते हैं, लेकिन अगला मैसेज पहले ले रहे हैं नरेन मल्होत्रा नीतू का। नमस्कार जी, आपको मान योग्य और आसपास फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। खैल बाज़ार पानीपत से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का और शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर गाना नहीं सुनवा पाएँ तो आपके नाम ही इस कार्यक्रम में हम शामिल कर पाएँ। और धर्मेंद्र छिपा जी लिख रहे हैं, आपको हार्दिक नमस्कार, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम, बेहतरीन प्रस्तुतिकरण, एक नगमा सुनवा दीजिए। ममता फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से ये लिख रहे हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। और ममता फिल्म के गाने के लिए एक और फरमाइश हमें आई है दिनेश वर्मा जी की, लिखते हैं रहे ना रहे हम ये गाना हमें सुनवाएं और फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। तो चलिए, सबसे ज़्यादा इसमें फरमाइश थी ममता फिल्म के गाने के लिए, तो एक गाना ममता फिल्म से सुनवा रहे हैं और उसके बाद कुछ और मैसेजेस हम शामिल करते हैं।

जी तो आपको बता दें कि आज सोमवार को भी ये गीतांजलि कार्यक्रम एसएमएस और मेल्स पर और फेसबुक मैसेजेस पर आधारित है, और बुधवार का ये कार्यक्रम भी फेसबुक मैसेजेस और मेल पर आधारित रहेगा। और मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है म्यूज़िक मेल धर्मशाला @gmail.com।

बहुत सारे मैसेजेस प्रोग्राम में हमें आए हैं और मेल पर भी हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। सभी को गाना तो हम आज के कार्यक्रम में नहीं सुन पाए।

ये क्योंकि एक घंटे के कार्यक्रम में केवल 10 या 11 गाने ही हम सुनवा पाते हैं, लेकिन कोशिश ये हमारी रहेगी कि सबके नाम इस प्रोग्राम में शामिल कर पाएं। मैसेज है राहुल पाल का, फिल्म लिखी है उन्होंने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गीत के बोल लिखे हैं पा लिया है प्यार तेरा, और राहुल पाल लिख रहे हैं हरी मोहन पाल, बल्लू पाल, अंजना पाल, ज्योति बघेल, लक्ष्य बघेल। इसहाक मोहम्मद चांदेड़ हमें मैसेज कर रहे हैं, पापी देवता फिल्म का गाना ये सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगवली से ये हमें लिख रहे हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। नारायण लाल जी साहू हमें मैसेज कर रहे हैं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम आरजी जी सादर, सब प्रेम नमस्कार, ये हमें लिख रहे हैं, नमस्कार हमारा भी। माँ बलेश्वरी रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमानी जिला राजनानंद गांव छत्तीसगढ़ नारायण से लिख रहे हैं लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, और लोफर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो चलिए क्योंकि बरसात के दिन है, मौसम बिल्कुल बेईमान हो ही जाता है, कभी ना कभी मेघराज बरस जाते हैं, तो चलिए गाना इनकी पसंद का सुनवा रहे हैं। और ये लिख रहे हैं जिनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता रिसीवन, नीलकंठ चंद्रहास साहू। तो चलिए इन सब की पसंद पर सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना।

लिख रहे हैं, सर प्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, हमारा भी अभिनंदन। गीत लिखा है उन्होंने, तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर। ये गाना सुनना चाहते हैं जबक फिल्म से। नई वाला ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिडा, अलका मिडा ये सब हमें मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें मैसेज कर रहे हैं फ़कीरा फिल्म के लिए लिखने वाले हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बुहाड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से।

नासिर पटेल जी हमें मैसेज कर रहे हैं स्वतन फिल्म का गाना सुनने के लिए इस्लामपुर ज़िला वुडलाना महाराष्ट्र से नासिर पटेल, रिजवाना, अंजुम, अल्फिया, सानिया और रोहान। और अहमगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, अफीना, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, समा, हेना और रजिया सुल्ताना अंसारी किसी भी गाने की फरमाइश हमें कर रहे हैं। इसी के साथ हमें रश्मि पांड्या जी लिख रही हैं, नमस्कार जी, और ये लिख रही हैं मैसेज हमें गुजरात राजकोट से। रश्मि, झरना, भरत कुमार, फिल्म बरसात की रात, नदिया किनारे पे हमारा बागान, ये गाना सुनना चाहती हैं। और गाना तो हम इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं सुनवा पाएंगे, और कुछ फरमाइशों के लिए हम ज़रूर इन्हें गाना पूरा इनकी फरमाइश करेंगे।

0: तो चलिए उत्तम कुमार भगत जी की फरमाइश पूरी करते हैं। उन्होंने फकीरा फिल्म का गाना सुनना चाहा था, कुछ संदेश सुनवाते हैं, उसके तुरंत बाद इनकी फरमाइश हम पूरी करेंगे।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

जी श्रोता, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि इतने सारे मैसेजेस आज के प्रोग्राम के लिए हमें मिले हैं, और हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हर किसी को हम गाना तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन उनके नाम हम प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उमेश कुमार गौड़ हमें लिख रहे हैं बुलंदशहर से, उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़, और कोई भी गाना हमें कह रहे हैं सुनवाने के लिए। ज़िला मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, किसी भी गीत में हमें शामिल जरूर करें जी। और प्रसारक जी को सेवा में नमस्कार लिख रहे हैं सदानंद मंदूकर जी, फिल्म आर पार का गाना ये सुनना चाहते हैं। और डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता, और साथ में धन्यवाद लिखा है। इसके साथ हम अगला मैसेज ले रहे हैं दुर्गा राम साहू जी का। नमस्ते जी, लिख रहे हैं चर डोगरी पिपरिया ज़िला कबीरधाम से लिख रहे हैं दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। कोई भी गाना सुनना चाहते हैं, इसके बाद अगला मैसेज और ले लेते हैं। अनोखे लाल जी लिख रहे हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से, पुराना शहर बरेली। अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। राशिद हुसैन अंसारी जी लिख रहे हैं आपको प्यार भरा आदाब, इनको भी आदाब। और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से ये लिख रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, मोहम्मद कैज वारसी, फिल्म जबक का ये गाना सुनना चाहते थे, तेरी दुनिया से दूर होकर चले मजबूर, और धन्यवाद इन्होंने हमें लिखा है। इसी के साथ जोहित यादव जी का नमस्कार हम ले रहे हैं, गाना सुनना चाहते थे गैम्बलर फिल्म का अपने होंठों की बंसी बना ले, और ये लिख रहे हैं गांव अल्डी डांड ज़िला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, श्रीमती फूलजी यादव नमस्कार जी लिख रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन हमें भेज रहे हैं। और चंडीगढ़ से भी इन्होंने दो नाम हमें भेजे हैं, सतीश अनेजा जी का और बिमला अनेजा जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए। और अगला मैसेज हम ले रहे हैं नानक खन्ना का, प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता को दिल से नमस्कार, हमारा भी प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधेश, जय द्वारिकाधीश, इन्होंने हमें लिख कर भेजा है। और गाना सुनना चाहते हैं आप आए बहार आई फिल्म से मुझे तेरी मोहब्बत का, ये लिख रहे हैं हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश और समस्त खन्ना परिवार। तो चलिए ये वाला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और कुछ और मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे इसके तुरंत बाद।

जी शो, तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं musicmaildishal@gmail.com पर, और फेसबुक पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपनी पसंद का गीत प्रोग्राम में शामिल करवाने के लिए। और ऐप के माध्यम से ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे प्रोग्राम आप ट्यून इन कर सकते हैं। अगला मैसेज हम ले रहे हैं नसीर पटेल का। सौतन फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, जिंदगी प्यार का गीत है। इस्लामपुर ज़िला बुलढाणा महाराष्ट्र से हमें ये लिख रहे हैं नसीर पटेल, रिजवाना, अंजुम, अल्फिया, सानिया और रेहान। और रश्मि पंड्या जी लिख रही हैं राजकोट गुजरात से, रश्मि झरना भरत कुमार फिल्म बरसात की रात का ये गाना सुनना चाहती हैं। और जुदाई फिल्म का गाना सुनने के लिए हमें राघव बाघेल जी मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ प्रसारक जी को नमस्कार, हमारी मधुर फरमाइश है आदरणीय रेडियो जॉकी एवं श्रोता मित्रों, हम सभी संगीत प्रेमी आज के इस बेहद खास शो में एक बेहद खूबसूरत सा रूहानी गीत शामिल करने का अनुरोध करते हैं। ये हमारे दिलों के बहुत करीब है, नगमा है चोरी हो गई रात नैन की। और महेंद्र कपूर जी, लता मंगेशकर जी की गाने की फरमाइश कर रहे हैं, राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे, मानेवाड़ा रोड नागपुर से श्री देवेंद्र भटकर जी, और जय हिंद। इन्होंने

लिखा है। इसके साथ ही हम एक और मैसेज ले रहे हैं मोहम्मद अफजल ताज का, पाकीज़ा फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं कोल सिटी वर्का काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना सोनू, तस्नीम और निपी साहिनी ने। तो चलिए पाकीज़ा फिल्म का गाना हम सब श्रोता मिलकर सुनते हैं।

जी श्रोता, बहुत सारे श्रोताओं के मैसेजेस जो हैं वो रह गए हैं जो हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि समय अब बिल्कुल हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। प्रोग्राम बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दें इजाज़त। बस यही कहना चाहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुनते रहें एफएम धर्मशाला, और साथ ही में musicmaildishala@gmail.com पर हमें फिर से आप मैसेजेस कर सकते हैं क्योंकि बुधवार को ये कार्यक्रम फिर से प्रस्तुत किया जाएगा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक।

अभी आप सुन रहे थे फेसबुक मैसेजेस और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म मेरा साया का ये गीत सुना। गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खां ने और संगीत था मदन मोहन का।

श्रोताओं, गीतों का एक कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म कसूर का भी आपने एक गीत सुना, अलका याग्निक की आवाज में, बोल लिखे थे समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था। कार्यक्रम का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शोर से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म ज्वेल थीप का अब ये गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना शैलेंद्र की है और सुर दिए हैं एसडी वर्मन ने।

श्रोताओं, गीतों का कारवा कार्यक्रम में अभी आपने गीत सुना फिल्म जोश से। आवाजें थी उदित नारायण और अलका यग्निक की। संगीतकार अनु मलिक थे और बोल लिखे थे समीर ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लेकिन से। लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं हृदयनाथ गुलजार।

FM FM 103.4 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
3: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
4: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं रीता, सपना और लक्ष्मी की मिलीजुली आवाजों में।

0: कार्यक्रम पहाड़ों के सुर के आखिर में लीजिए सुनिए ऋषिका शर्मा और मानसिंह की आवाजों में ये लोकगीत।
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: लोकगीत आप सुनिए लेकिन विज्ञापनों के बाद।
4: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के साथ साथ पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि लोगों को बेहतर, सुलभ और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से आज हरोली में करीब 8.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले अतिरिक्त अस्पताल भवन की आधारशिला रखी जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस अतिरिक्त भवन के बनने से अस्पताल की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और मरीजों व उनके परिजनों को बेहतर व अधिक सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने पंचायतों में घरेलू व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण के लिए यूजर चार्ज वसूलने के निर्णय पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेशवासियों पर आर्थिक बोझ डालने का अभियान चला रखा है, जबकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता को राहत देने के बड़े बड़े

0: वायदे किए थे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के बजाय केवल राजस्व जुटाने के लिए जनता की जेब पर डाका डाल रही है।
1: गांव गांव में और हर गरीब परिवार पर नए नए दुख देने का कार्य कर रही है। अब इनका नया एक तुगलकी फरमान आया है कि गांव में कचरा कलेक्ट करने के लिए हर घर में 50 रुपए का हर महीने टैक्स वसूला जाएगा। दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो इन्होंने कमिटमेंट चुनाव के समय में की थी वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही। मैं ये बात हिमाचल की जनता के सामने रखना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लिए अब बहुत कम समय रह गया है, इन तुगलकी फरमानों को वापस लेगी।
0: भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। सिरमौर जिला की समृद्ध लोक संस्कृति और विशेषकर हाटी समुदाय की पारंपरिक पहचान सिरमौरी लोहिया को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिलने पर पूरे गिरिपार क्षेत्र में खुशी की लहर है। सदियों से पहाड़ की ठंडी वादियों में लोगों को गर्माहट देने वाले ये पारंपरिक ऊनी लोहिया अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान के साथ दर्ज हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सिरमौरी लोहिया केवल एक ऊनी परिधान नहीं बल्कि हाटी संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय बुनकरों की अद्भुत हस्तकला का जीवंत प्रतीक है। इसे स्थानीय भेड़ों की ऊन से पारंपरिक करघों पर हाथ से बुना जाता है। इसकी मजबूत गर्माहट और विशिष्ट बुनाई इसे अन्य ऊनी उत्पादों से अलग पहचान देती है। वर्षों से ये लोहिया सिरमौर के ग्रामीण जीवन, लोक रीति रिवाजों और पारंपरिक वेशभूषा का अभिन्न हिस्सा रहा है। जीआई टैग ये प्रमाणित करता है कि सिरमौरी लोहिया अपनी विशिष्ट गुणवत्ता, पारंपरिक निर्माण शैली और सांस्कृतिक महत्व के कारण जिला की अमूल्य धरोहर है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: चंबा जिला की पवित्र मणिमहेश यात्रा में इस बार कोई भी श्रद्धालु बिना पंजीकरण के पवित्र डल झील के दर्शन नहीं कर पाएगा। ये निर्णय जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सभी से पालन करने का आग्रह किया है ताकि मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
3: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार हम लोग मैंडेटरी करेंगे, उसके बिना किसी भी यात्री को उस तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। कुछ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट, एसडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट, पुलिस की डिप्लॉयमेंट, उसमें भी वृद्धि की जाएगी ताकि अगर पिछले प्रकार की सिचुएशन वापस होती है तो हम लोग बेहतर स्थिति में हों कि हम उसको टैकल कर सकें।
0: युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके तहत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। श्रोताओं, हाजिर हाँ, मैं मीनाक्षी लेकर कार्यक्रम महक पंजाब दी। ते कार्यक्रम की शुरुआत करते ने इस पंजाबी गीत के नाल जिन्हों गाया है हरभजन मान ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa. श्रोताओ, महक पंजाब दे कार्यक्रम तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी ते धर्मशाला केंद्र ते एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ चे। ते एक कार्यक्रम तुसी सुन रहे हो अपने रेडियो दोस्त मीनाक्षी दे नाल। हुण तुहानू सुनवा रहे ने मां ते धीआं दे प्यार नू दर्शांदा एह गीत, जिहड़ा साडे दिल ते रूहां नू टटोल जांदा है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महक पंजावती। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:30 होने को हैं, अब आपको सुनवाते हैं NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
3: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
3: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी, इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय।

0: है मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का, वो लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
0: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
0: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
0: श्रोताओं, इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी, अश्रोताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था। हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल
3: फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
5: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
6: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
5: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
4: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
5: अरे काट काट काट, अरे मेरा भी क्या देख रहा काट।
7: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
4: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
8: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
4: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
5: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
9: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
6: और पैसे कमाने हैं।
4: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते,
6: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
10: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
4: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे, इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर

0: बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
1: अरे अरे पशु पक्षी, हमारे घर का सारा सामान बह जाएगा,
2: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल
2: सारी फसल बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
2: सारा
1: सामान उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी,
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
2: चलो चलो,
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने

0: परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं,
1: मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यही तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती, अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
1: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
1: और हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है रे।
1: हाँ? वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ, छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ,
4: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ गए।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: हाँ, चल चलते हैं।

0: कैसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: नहीं गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें न सुन ले।

0: चलो और नजदीक चल के देखते हैं। चलो
1: खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
2: हाय राम,
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
0: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
0: वहाँ में देखो तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
3: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
0: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं। अच्छा। वो रास्ता छोटा रहेगा।
1: हाँ, हाँ,
4: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
0: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
0: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी। नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो। चाची,
5: क्या बात है?
0: जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
1: क्या जंगल?
0: जल्दी आओ,
4: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ीं और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
0: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।

0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
1: चिब्बू भाग ले यहां से,
2: बाद में
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
3: वाह, ये गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया। ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही नहीं पेड़ को। अरे क्या बात है भाई, गौरा वाह, कमाल जीतती रहे मिट्टी जीतती रहे।
4: ये तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
5: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को,
5: कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना
6: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

दोपहर के ठीक 12 बजे हैं और हम हाजिर हैं फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

महेंद्र कपूर और साथियों का गाया पूरब और पश्चिम फिल्म से ये देशभक्ति गीत सैनिक साथियों अभी हमने सुना। श्यामल मित्रा के संगीत निर्देशन में अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार को, फिल्म है अमानुष।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शालीमार फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। इसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत आर डी वर्मन का है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

सैनिक साथियों, इसी गीत के साथ दीजिए इजाज़त। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी।

हवा में घुली है देवभूमि की पावन सी पहचान, हर घाटी गाती है संस्कृति का मधुर गान। आइए चलें उस धरती पर जहां बसता है विश्वास, हिमाचल की इस पावन मिट्टी में आज भी धड़कता है इतिहास। नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं अपना प्रिय कार्यक्रम सुनो सखी, अपनी रेडियो दोस्त मीनाक्षी के साथ। दिन है सोमवार और आज के इस खास दिन में हम बात करते हैं अपनी हिमाचली संस्कृति के बारे में। आज हम आपको बता रहे हैं अपनी इस पावन धरती के बारे में, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की संस्कृति, लोक परंपराएं, मेले, त्योहार, लोक नृत्य, लोकगीत और लोगों की सादगी पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश केवल बर्फ से ढके पहाड़ों का ही प्रदेश नहीं है, बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, पहाड़ी खान पान, आस्था, लोक जीवन का जीवंत संग्रहालय है। यहाँ के लोगों में सादगी और सरलता देखने को मिलती है, जिसमें ग्रामीण परिवेश और प्रकृति से गहरे जुड़ाव का अभ्यास हमें होता है। अतिथि देवो भवा को सच में दिल से माना जाता है और अतिथि का स्वागत मुस्कान और अपनेपन के साथ करना यहाँ की पहचान है। तो बहुत सी बातें हमें अभी आपसे करनी है, लेकिन फिलहाल हम अपनी बातों को देंगे थोड़ा सा विराम और करवाएंगे आपका मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: गीत के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का।

हिमाचली संस्कृति में, जहां अब हम बात करेंगे हिमाचली वेशभूषा और आभूषणों पर। रंगों में बसी है संस्कृति, धागों में सम्मान है, हिमाचल की हर पोशाक अपनी अलग पहचान है। चांदी के गहनों की चमक हो या टोपी का अभिमान, इनमें बसती है देवभूमि की आत्मा और स्वाभिमान। जी हाँ सखियो, आकाश जितने ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियाँ, देवदार की महकती वादियाँ और सरल स्नेही लोग, यही है हमारी देवभूमि हिमाचल प्रदेश। लेकिन सखियो, हिमाचल की पहचान केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं है, बल्कि इसकी समृद्ध वेशभूषा और पारंपरिक आभूषण भी हैं। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा यहाँ की जलवायु, संस्कृति और लोक जीवन का सुंदर प्रतिबिंब है। हर मौसम यहाँ बेहद खूबसूरत और सुहावना लगता है। ठंडक का एहसास अधिक होने की वजह से गर्मियों का समय 2 महीने तक का ही रहता है। पहाड़ी इलाकों की ठंड को ध्यान में रखते हुए ऊनी वस्त्रों का विशेष महत्व रहता है। यहाँ की पोशाकें केवल शरीर को गर्म रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि कला, परंपरा और पहचान का भी प्रतीक है। यहाँ के जो पुरुष होते हैं, उन्हें सादगी अधिक पसंद होती है। पुरुषों की वेशभूषा में हिमाचली टोपी सबसे विशेष मानी जाती है। हरी, लाल या फिर मैरून रंग की पट्टी से सजी ये टोपी आज हिमाचल की पहचान बन चुकी है। इसके साथ ऊनी कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, सदरी या ऊनी चोगा पारंपरिक पहनावे को पूर्णता देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा अत्यंत आकर्षक और गरिमामय होती है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके रूप अलग हैं। कुल्लू और किन्नौर में रंग बिरंगे ऊनी शॉल, सुंदर पट्टू और पारंपरिक परिधान विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं। किन्नौरी शॉल अपनी महीन बुनाई और रंगीन डिजाइनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। चंबा के रुमाल की कढ़ाई भी हिमाचल की समृद्ध हस्तकला का अद्भुत उदाहरण है। अब बात करते हैं आभूषणों की। हिमाचली महिलाओं के चांदी के आभूषण उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। चंद्रहार, रानीहार, चांदी की माला, गोजरू, कंगन, पाजेब, झुमके, नथ, मांग टिक्का, बिछुए, बाजूबंद जैसे आभूषण केवल श्रृंगार ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। कई क्षेत्रों में विशेष अवसरों पर पारंपरिक चांदी के भारी आभूषण आज भी पूरे गर्व के साथ पहने जाते हैं। सखियों, बातें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल हम अपनी बातों को देंगे थोड़ा सा विराम और करवाएंगे अपनी सखियों का मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: गीत के बाद एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं मीनाक्षी, लेकर हिमाचली संस्कृति के रंग, जहाँ हम बात कर रहे हैं हिमाचली वेशभूषा और आभूषणों पर। सखियों, हिमाचल की वेशभूषा और आभूषणों का महत्व केवल त्योहारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विवाह, मेले, देव उत्सव और लोक नृत्यों के दौरान लोग पूरे उत्साह के साथ अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। जब नाटी की मधुर धुन पर रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे लोग एक साथ थिरकते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी संस्कृति जीवंत होकर हमारे सामने नृत्य कर रही हो। आज आधुनिक फैशन का दौर है, लेकिन ये देखकर खुशी होती है कि हिमाचल की नई पीढ़ी भी अपने पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों पर गर्व करती है, और यही हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है। आइए हम सभी संकल्प लें कि अपनी लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, वेशभूषा और आभूषणों का सम्मान करेंगे, उन्हें अपनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी गरिमा पहुंचाएंगे। तो सखिए, बहुत सी बातें आज हमने की हिमाचल संस्कृति के बारे में, और अब रुक करते हैं रसोई घर की तरफ, जहां हिमाचली खान पान को हमने किया है शामिल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पतरोड़ू, जो कि यहाँ का बेहद स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन है, और बरसात के इस मौसम में इसे बनाने और खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं लगभग 12 अरबी के मध्यम आकार के पत्ते। इन्हें अच्छे से धो लिया है और डंठल अलग कर लिए हैं। अब हम इसमें लगाने के लिए बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लगभग 2 कटोरी बेसन की ली है और उसमें 2 चम्मच के करीब चावल का आटा डाल दिया है, और एक प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हल्दी 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से इन सब में पानी मिलाकर थोड़ा गाढ़ा घोल हम तैयार कर लेंगे और पत्ते के पीछे की तरफ इसे लगाना शुरू कर देंगे, और उसे एक एक करके हमने पत्तों में लगाना है। और बेसन का घोल अब जैसे एक पत्ते में लगा दिया है, फिर उसके ऊपर हमने दूसरा पत्ता रखना है और उस पर भी वैसे ही वो घोल लगाना है, और उसके बाद एक और पत्ता रखना है, और 3 पत्तों में हमने इस क्रिया को दोहराना है। फिर दोनों तरफ अच्छे से बेसन लगाना है और उसे घुमाकर रोल करके हमने वो बना देना है, और इस तरह से हम सभी पत्तों को तैयार कर लेंगे और फिर कुकर या स्टीमर में इन्हें अच्छे से स्टीम कर लेंगे और फिर ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इन्हें गोल गोल काट लेंगे। अब हम इन्हें चाहे तो तवे पर रखकर शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर कढ़ाही में डीप फ्राई भी हम इन्हें कर सकते हैं। ये ख़ास पहाड़ी व्यंजन पतरोड़ू आप किस तरह से बनाती हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो आप भी ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए और परिवार में भी सबको खिलाइए। और खान पान के बाद अब करवाते हैं आपका मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ। तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इसी गीत के साथ सखियों समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी मीनाक्षी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी का, हिमाचली संस्कृति का एक खास अंक। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को है।
1: बंगाल में 2 नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण

0: कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent for winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held at Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. The Prime Minister further noted that it is equally commendable that in the last decade, Indian students have performed exceptionally well in the various editions of this platform. The government today informed that 4 new generation indigenous naval platforms were inducted into the Indian Navy in just 1 month to strengthen the country's maritime defence. The latest addition is INS Mahendragiri, the 6th indigenously designed Nilgiri class stealth frigate, which was inducted on the 11th of this month. A report.
2: On 21st of last month, the Indian Navy inducted 3 indigenously designed and built platforms, namely INS Dunagiri, INS Sansodhak and INS Agraya. These frigates are built under Project 17A for multi-mission roles, including anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare. Project 17A is the Indian Navy's advanced stealth frigate program to build 7 next-generation guided missile warships equipped with advanced stealth features, enhanced survivability, a reduced radar signature and a high degree of automation. These warships are capable of undertaking the full spectrum of maritime operations across all dimensions of naval warfare. Built with a high indigenous content, these platforms reflect the vision of Atmanirbhar Bharat and strengthen the country's defense manufacturing ecosystem. With Pallavi Parmar, this is Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today by Vietnam Airlines flight. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. In West Bengal, 2 new anti-crime laws have become effective from today. Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti

हाँ तो भाई, किसी ने लिखा था कि पूरा गाना आखिरी तक बजाना विसिल के साथ, विसिल के तक। तो लीजिए, आपने जैसा कहा था, पूरा विसिल तक आपको गाना सुनवाया है। एक साथी ने लिखा है, जीवन में कुछ तस्वीरें समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती, वे यादें यादों की दीवार पर हमेशा टंगी रहती हैं। कुछ बिगड़ने, कुछ अधूरे सपने और कुछ अनकहे एहसास मन को तपाते हैं, लेकिन यही तपन इंसान को अंदर से मजबूत भी बनाती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती हैं। एक साथी ने लिखा है, ये इबारत केवल जीवन का चिंतन नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन की उस मौन यात्रा का सजीव चित्रण है, जहां संवेदनाएं ही जीवन का वास्तविक आलोक बनकर मार्ग प्रशस्त करती हैं। संबंधों का सौंदर्य अधिकार में नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित होता है। जीवन में बिछड़ना, टूटना, छल और विरह जितने भी कठोर अनुभव हों, यदि वे मनुष्य की संवेदनशीलता को जीवित रखें तो वही उसके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। स्मृतियां समय के साथ धूमिल नहीं होती, वे आत्मा की धरोहर बनकर हमें भीतर से परिपक्व करती रहती हैं। अंततः जीवन की सबसे बड़ी विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा, सत्य और प्रेम को अक्षुण्ण बनाए रखने में है। जी हाँ, और जो पिछला गीत था उसका शब्द था पुकार, और आप में से कई श्रोताओं ने इसे सही भी पहचाना। लीजिए, अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं, सरस्वती चंद्र फिल्म से मुकेश की आवाज़ में इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

चंदन शब्द था इस गीत से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं सदैव स्वभाव पर हावी होती हैं, कितने भी मन को कड़ा करें। बच्चे जब दूर कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, सब्र का बांध टूट ही जाता है। जी हाँ, इस बात को हर वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जो किसी काम के चलते या फिर किसी मजबूरी के चलते अपने परिवार से दूर जा रहा है। और जब व्यक्ति दूर जा रहा होता है तो जाने वाले को लगता है उसका गम बड़ा है, और जो घर पे अकेला रह जाता है उसे लगता है उसका दुख बड़ा है। लेकिन सच मानिए, दोनों अपनी अपनी स्थिति में अपनी अपनी जगह पर बड़ा दुख झेल रहे होते हैं जब वो एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं। एक साथी ने लिखा है, आज कुछ खास किस्म के गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है। संबंधों की पड़ताल करते ये गीत अमर हैं, इन्हें सुनते बड़ा सुकून मिलता है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मेरा साया से, लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहदी अली खान के बोल, मदन मोहन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, सचमुच ही मनुष्य का वक्त गुजर जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लम्हे याद रह जाते हैं, कुछ सुकून रह जाते हैं, कुछ संवेदनशीलता होती है जो कि उम्र भर जीने की राह सिखाती है। कभी कभी उन यादों के सहारे भी रोना पड़ता है जो बीत गए हैं। उन पुरानी यादों की गलियारों से रूबरू कराती है विविध भारती परिवार। सुरीला सफर सचमुच विविध भारती का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध भारती परिवार सुख दुख की बातें और जीने की राह सिखाती है। विविध भारती को कोटि कोटि धन्यवाद, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिखते हैं, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना और करुणा रखना, यही संवेदनशीलता व्यक्ति की पहचान है। संवेदना समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे को बढ़ाती है। यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। जीवन में कभी कभी अपने भी गैर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब गैर भी अपने लगने लगते हैं। यही सच्चाई है, ये भी एक साथी ने लिखा है। और ज़रूर आपको ऐसा कोई अनुभव आया होगा जिससे आप ये बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी अनजान शहर, अनजान जगह पर होते हैं तो कभी कभी कोई इस तरह मदद कर जाता है, इस तरह साथ दे जाता है कि हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए भाई समान है, बहन समान है जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमें ईश्वर रूप में मिल गया। ये हम तभी तो कहते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति यूं ही हमारी मदद कर जाता है, वो भी बिना किसी अपने मुनाफा के, बिना किसी लालच के। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और अभी जो गीत आपने सुना उसका शब्द था साथ। यही साथ तो है जो हमें लोगों से मिलता है, जिसके ज़रिए ये समाज जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गीत अनोखी रात फिल्म से, मुकेश की आवाज़ में, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत।

0: तो साथियों, मुझे लगता है ये गीत भी आप ही की लिस्ट में से होगा। बहुत सारे लोगों ने इस गीत को भी सही पहचान लिया था। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफ़र कार्यक्रम वास्तव में सुरीला महसूस हो रहा है। आज की इबारत में शामिल शब्दों पर आधारित गाने लाजवाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ये लिखते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सार्थकता तब है जब हम दूसरों के सुख दुख को अपनी अनुभूति से समझें, और ये संवेदना हृदय का स्पंदन है जो हमें मानवता से जोड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि बाहरी प्रकाश यानी कि ज्ञान भी आंतरिक संवेदना रूपी दीपक से ही प्रकाशित होता है। वहीं चंदन की तरह शीतल रहकर संबंधों के मूल को समझना सहज बोध, भावनात्मक परिपक्वता और गांभीर्य का प्रतीक है, क्योंकि चंदन की प्रवृत्ति बिना भेदभाव के सुगंध देने की है। सागर अपनी विशालता और गहराई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है इस गीत का कौन सा वो शब्द है जिससे इस गीत को लिया गया है।
1: सजन रे झूठ मत बोलो,

जी हाँ, तो इस गीत से जो शब्द था वो था झूठ, और आप सभी ने सही पहचाना है। एक एक टिप्पणी अभी मुझे दिखी, एक श्रोता ने लिखा है कि मजाल है कोई भी गीत श्रोताओं की लिस्ट में से बच जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई दूसरा चैनल ट्यून तो नहीं कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप विविध भारती ही सुन रहे हैं या कोई दूसरा चैनल आपने गलती से लगा लिया हो, क्योंकि अक्सर जो गीत हमें यहाँ पर, यानी जो कमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने सही गीत पहचाना है और वो गीत बज भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। एक साथी लिखते हैं, इस गीत के लिए दिल से शुक्रिया, पर हमारे घर में आज गेस्ट आए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही ये गीत बजा खुद को रोक नहीं पाए और चाय भी गिर गई। देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना आपकी चाय गिरने का सारा दोष विविध भारती पर आ जाएगा। आपने तो लिख ही दिया है सारेआम। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल, अच्छा ये कमेंट तो हमने पढ़ दिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, आत्मा का संगीत तब तक गूंजता रहता है जब तक हृदय में दूसरों के प्रति करुणा जीवित हो। हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और नदी जैसी निश्चल आत्मीयता से किसी के मौन को पढ़ना ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। दिखावे और छल से कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है, मगर अंतरात्मा को कभी संतोष नहीं मिलता। इंसान अक्सर अजनबियों की भीड़ में उस एक आत्मीय स्पर्श की तलाश करता है। कुछ लम्हे वक्त के पन्नों पर धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन उन यादों की तपिश और संघर्षों की हर एक चोट मनुष्य को भीतर से और अधिक निखार कर फौलाद बना देती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है, इस टिप्पणी को पढ़कर सच मानिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही इबारत को दूसरे तरीके से लिखा गया हो। इतना मेल खाती ये टिप्पणी है। और चलिए अगले एक गीत की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत है, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

देखिए कितनी अच्छी बात कहता है ये गीत, इसका अर्थ कितना अच्छा है कि यदि आप बेसहारा हैं और किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं तो आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जो तकलीफ़ें आपने सही हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक साथी ने इसी तारतम्य में लिखा है कि महामारी के समय में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस वक्त मेरे अपने सगे मेरे साथ नहीं आए, लेकिन एक पड़ोसी मेरे साथ आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इसलिए कहता हूँ, कभी अपने ही गैर होते हैं और गैर अपनी जान जोखिम में डालकर मददगार साबित होते हैं। ऐसे शख्स उम्र भर अपने रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो अनुभव किया, ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आपका उस व्यक्ति ने साथ दिया है तो सच में लगता है मानो भगवान हमारे सामने आ गए हो, साक्षात भगवान ने ही अपने देवदूत को भेजा हो हमारे लिए। और अभी जो गीत आपने सुना था उसका शब्द था सहारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत चित्रलेखा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी टूटता नहीं। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देता है, संबंधों को गरिमा देता है। एक साथी ने लिखा है, जीवन का गणित कोई समीकरण नहीं है कि जब चाहा सुलझा लिया। संवेदना का तत्व जीवन की को ज्योति देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक इसमें अशांति बनी रहती है, और शांति के लिए ही इंसान तमाम प्रयास आजीवन करता रहता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, यहाँ चंदन सी शीतलता है और अग्नि सी दाह भी। जीवन का पूरा सच केवल एक है, इसका पूरा संसार बहुत रहस्यमय है। परिस्थिति कोई भी हो हमें बस जीते जाना है। और लीजिए इसी के साथ सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज में, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था मन, और पहचानिए कि इस अगले गीत का शब्द कौन सा है।

किसी ने लिखा दिल शब्द है, किसी ने लिखा ढूंढता शब्द है। वाकई इस गीत में दोनों ही शब्द शामिल है, लेकिन हाँ, जिस शब्द को लेकर हमने इस गीत को चुना था वो शब्द है ढूंढता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई साथियों ने लिखा है कि ये गाना बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा लगता है, अच्छा लगता है, पसंद करने के लिए धन्यवाद। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये सुदास की आवाज़ में सावन को आने दो फिल्म का गीत। फोक जामी ने इस गीत को लिखा है, राज कमल का संगीत।

तस्वीर शब्द आप सभी ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है कि हमें दुनिया से अलग गांव, यही विविध भारती का प्लेटफॉर्म जहां हम श्रोता रोज मिलते हैं। कितना प्यारा गांव है ये। जी हाँ, ये गांव ही तो है जहां हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ

साझा करते हैं। ये वो मंच है जहाँ हम दिल खोलकर बोल सकते हैं, और यदि कोई बात, यदि कोई नाराज़गी हो, कुछ हो, तो हम यहाँ पर साझा करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। जी हाँ, यूं ही हल्की फुल्की बातों के साथ आज का सुरीला सफ़र अब संपन्न करने की दीजिए इजाज़त नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में बातें दुनिया की। कहने को तो मात्र तीन अक्षरों का शब्द है दुनिया। छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने भीतर अनंत आकाश, अगाध महासागर। ये शब्द दुनिया जहां दार्शनिकों के लिए एक पहेली है, वहीं वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सी प्रयोगशाला है, और कवियों के लिए उनके लिए भावनाओं का एक बहता हुआ दरिया। हम इस दुनिया में आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये दुनिया अपनी धुरी पर निरंतर घूमती रहती है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है इसका बदलाव। आज जो शिखर पर है, कल एक शून्य हो सकता है। इंसान पूरी जिंदगी चीजें बटोरने में लगा देता है, लेकिन भूल जाता है कि वो इस रंगमंच पर केवल एक मुसाफिर है। अपने बड़ों से हमने ये सुना भी है ना कि दुनिया एक सराय है जहाँ हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुकते हैं।

0: तो क्या है।
1: दुनिया केवल मिट्टी और पानी का गोला नहीं है दोस्तों, ये रिश्तों का एक घना जंगल है। यहाँ पर प्यार है, तकरार है, वफादारी है तो धोखा भी है। हर इंसान इस बड़ी सी दुनिया में अपनी अलग एक छोटी सी दुनिया बनाता है, जिसमें उसका परिवार, दोस्त और सपने शामिल होते हैं। आज के समय में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया शब्द का अर्थ बदल गया है। अब हम डिजिटल दुनिया के वासी हो गए हैं, जहां हजारों फ्रेंड्स तो हैं, फिर भी इंसान अकेला महसूस करता है। संघर्ष इस बात का है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को सजाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आंतरिक दुनिया यानी हमारा इनर वर्ल्ड उसको भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी तमाम दुखों और संघर्षों के बावजूद ये दुनिया खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता है।

भाई दर देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं।

मेरा ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तेरे तेरे नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई

मरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा।

0: कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: आज की दुनिया बिखरी सी है सीमाओं में, विचारधाराओं में, लेकिन जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी दुनिया एक परिवार नजर आती है। विज्ञान ने दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन दिलों की दूरी मिटाना अभी बाकी है। दुनिया को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है प्रेम। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा दुनिया को कौतूहल और मासूमियत से देखता है, जबकि एक वृद्ध इंसान उसे अनुभवों को पोटली मानकर देखता है। यानी कि दुनिया वैसी है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। दुनिया की विशालता और उसमें मनुष्य की छोटी सी हस्ती को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। हम सबको इस दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी सुंदर, हरा भरा और सुरक्षित छोड़कर जाना है।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: आज की त्रिवेणी में बातों का सिलसिला बस इतना ही। दीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
3: जी।
2: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना ज़रूरी रहता है।

यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया। तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को SI का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
3: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
4: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे लिए नहीं हुआ, अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का

0: झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रूपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने कहा है कि ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269

0: आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। तस्वीर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में। डी एन मधोक ने इस गीत को रचा है। सी रामचंद्र का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सिंदूर फिल्म का गीत, आवाज मोहम्मद अजीज की, आनंद बख्शी की रचना है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला के सिविल अस्पताल हरोली में आज लगभग 8 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों वाले अतिरिक्त भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भवन का निर्माण कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर, आधुनिक व अधिक सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सिविल अस्पताल हरोली को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल खोलने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज राजकीय महाविद्यालय सोलन में डिजिटल पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय के माध्यम से महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण और सुदृढ़ होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल संसाधनों को सुगम पहुंच मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
1: सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में विशेषकर वैसे तो सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का प्रौद्योगिकी का शिखर पर जाना और बच्चों के लिए कैसी सॉफ्टवेयर ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो उनको डिजिटली अवेलेबल हो, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ब्रेक थ्रू है टेक्नोलॉजी की और बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हो रही है। मेरा मानना है कि इसी के साथ साथ हमें बच्चों का जो कल का भविष्य है उसको भी ध्यान में रखना है। बाकी डिजिटल लाइब्रेरी का बहुत ही बहुत स्वागत है। ज्ञान तो जितना अर्जन हो और जिस धीरे से हो वो बहुत अच्छी बात है।
0: भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत नशा मुक्त भारत 2029 का रोड मैप केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि देश की युवा पीढ़ी को नशे के अभिशाप से बचाने का राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये अभियान पूरे देश के लिए तैयार किया है, जो ये दर्शाता है कि सरकार युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र की इस नीति को पूरी गंभीरता के साथ अपनाना चाहिए और उन्होंने नशा मुक्त भारत के रोड मैप को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का सुझाव भी दिया।
2: ये जो नशे को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है, जहां सभी राज्यों को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार भी इसको गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट करे। किसी भी देश को खोखला करने के लिए, कमजोर करने के लिए वहां के नौजवानों पर जो अटैक होता है, और ये नशा जो है ये हमारे देश के नौजवानों पर सीधा अटैक है। स्पष्ट संदेश मैं देना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी ये जो निर्णायक लड़ाई है नशे के खिलाफ, इसको लड़ने के लिए बिल्कुल संयुक्त रूप से तैयार है। और मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की या किसी विशेष दल की ना हो रहकर ये सभी राजनीतिक दल हो, सभी सामाजिक संगठन हो।
0: राज्य सरकार किसानों को टिकाऊ व लाभकारी कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत विशेष प्रशिक्षण अभियान चला रही है। अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य नोडल अधिकारी अतुल डोगरा ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 30 किसानों को शामिल किया जा रहा है। इस दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले विभिन्न जैव आदान सहित अन्य प्राकृतिक उत्पादों को तैयार करने व उनके उपयोग की विधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतुल डोगरा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चंबा जिला की पवित्र मणिमहेश यात्रा में इस बार कोई भी श्रद्धालु बिना पंजीकरण के पवित्र झील के दर्शन नहीं कर पाएगा। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया है। उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सभी से पालन करने का आग्रह किया है, ताकि मौसम की स्थिति को देखते हुए किसी भी अनहोनी से बचा

0: जा सके।
1: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार हम लोग मैंडेटरी करेंगे, उसके बिना किसी भी यात्री को उस तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। कुछ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट, एसडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट, पुलिस की डिप्लॉयमेंट, उसमें भी वृद्धि की जाएगी, ताकि अगर पिछले प्रकार की सिचुएशन वापस होती है तो हम लोग बेहतर स्थिति में हों कि हम उसको टैकल कर सकें।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए सामयिक चर्चा, विषय है भारत के वस्त्र उद्योग में सततता की बुनावट, वस्त्र मूल्य श्रृंखला में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
3: अक्सर भारत के औद्योगिक विकास का चरखा कहा जाने वाला वस्त्र और परिधान क्षेत्र विनिर्माण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2025 के अनुसार इस क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% और विनिर्माण सकल बाजार मूल्य का करीब 11% योगदान है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक देश है, जिसकी वैश्विक निर्यात में करीब 4% हिस्सेदारी है। ये क्षेत्र 45 मिलियन से अधिक लोगों, जिनमें कई महिलाएं और ग्रामीण श्रमिक शामिल हैं, को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करता है। इसके आर्थिक पैमाने निर्यात संबंधों और रोजगार की सघनता को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए स्थिरता का महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वैश्विक बाजार पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार उत्पादन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भारत के वस्त्र उद्योग के पास अपनी प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का अवसर है। इस दायरे में चक्रीय उत्पादन पूरे क्षेत्र में गति पकड़ रहा है। भारत की समृद्ध वस्त्र शिल्पकला और संसाधन सचेत उत्पादन की विरासत को व्यापक मान्यता मिल रही है, क्योंकि वैश्विक बाजार पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने वाले उत्पादों को अधिक महत्व दे रहे हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सामग्रियों और संसाधनों का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है। इससे अपशिष्ट और उत्सर्जन को कम करने के साथ ही अधिक टिकाऊ उत्पादन पद्धति को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसका मूल सिद्धांत इनपुट के उपयोग में चक्रियता सुनिश्चित करता है। वस्त्र क्षेत्र में स्थिरता और चक्रियता आपूर्ति श्रृंखला के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। मौजूदा सामग्रियों को उनकी मूल संरचना में बदलाव किए बिना पुनः उपयोग किया जाता है। इससे ऊर्जा, रसायन और पानी की खपत कम होती है, साथ ही पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव भी कम होता है। भारत की पहली नगर निगम वस्त्र रिकवरी सुविधा नवी मुंबई के बेलापुर में स्थित ये सुविधा वस्त्र अपशिष्ट को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के अवसर के रूप में मान्यता देती है। ये केंद्र संग्रहण, छंटाई, अपसाइक्लिंग प्रौद्योगिकी और आजीविका को एक चक्रीय पुनर्चक्रण इकोसिस्टम में एकीकृत करता है। इसने 30 मीट्रिक टन उपयोग के बाद के वस्त्र अपशिष्ट का संग्रहण किया है और 25.5 मीट्रिक टन की छंटाई की है। इसके अलावा 41,000 से अधिक वस्तुओं का प्रसंस्करण किया है और 400 से अधिक अपसाइकिल किए गए नमूने विकसित किए हैं। इसने 1,14,000 परिवारों तक पहुंच बनाई है और प्रदर्शनियों व बाजार तक पहुंच के माध्यम से महिला कारीगरों को सहायता प्रदान की है। वस्त्र उत्पादन की स्थिरता इनपुट स्तर से ही शुरू होती है। रेशों और कच्चे माल का चुनाव पूरी मूल्य श्रृंखला के पर्यावरणीय प्रभाव को निर्धारित करता है। इसलिए नीतिगत समर्थन जैविक रेशों, आधुनिक प्राकृतिक रेशों और हानिकारक इनपुट के कम उपयोग की ओर निर्देशित किया जा रहा है। प्रमाणन ढांचे और कृषि सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में जैविक फाइबर उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत किया जा रहा है। सतत उत्पादन और उपभोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में क्षमता को भी मजबूती मिलती है। इनके प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षित रसायन, पर्यावरण के अनुकूल वस्त्र और जैविक वस्त्र शामिल हैं। ऐसी ही एक पायलट परियोजना है भारत में कपड़ा फैशन आपूर्ति श्रृंखला से खतरनाक रसायनों को समाप्त करना। ये 8 समूहों के 400 कारखाने और 4 फैशन

0: हाउसों को कवर करती है। वस्त्र उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव में विनिर्माण चरण की केंद्रीय भूमिका होती है, क्योंकि इसमें जल, ऊर्जा और अन्य संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। सतत विनिर्माण उपाय, स्वच्छ अवसंरचना, संसाधनों के कुशल उपयोग, चक्रीय प्रक्रिया और कम उत्सर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की वस्त्र और परिधान उत्पादन क्षमता में लघु व मध्यम उद्यमों का योगदान 80% से अधिक था।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहनें की दूसरी कड़ी।
3: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहां कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारे उसूल परवरी धरी रह जाएगी और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुवत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी। शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूं, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी और जू ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
4: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
5: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी। 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
4: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए। बोली,
3: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ, अभी नहीं।
5: बहन क्या रात भर भी न ठहरोगी?
3: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
5: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
3: अब खुद कहला दूंगी। हाँ,
5: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
3: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
4: इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी ना था। दुआ देकर बोली,
3: कैसे हो गुरु सेवक, आज यहां ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला?
4: गुरु सेवक हंसकर बोला,
6: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?

0: शिकायत तो सही है। वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
1: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए।
0: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है। फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूँ।
2: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
3: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। रामदुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
0: नहीं, आज आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है। फिर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
3: आखिर रामदुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
1: दीदी, मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
0: हाँ, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो। देखो जरा हाथ पैर संभाल कर रहना भाई।
1: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूं। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। आप ही बताइए, ईमान खोके पैसे मिले तो क्या?
0: सही कह रहे हो।
1: हाँ, ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूं, और आंखें किसकी बचाऊं? सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं। हाँ, उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर
0: अच्छा,
1: बड़ा मर्दुम शनास आदमी था। मुझे 100 रुपए पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया। आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
0: अच्छा, एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है?
1: हाँ वही, मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
0: अच्छा,
3: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया, और उमानाथ तो मुखातिब ही ना हुए।
0: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन अब इस घर से मुतलक दिलचस्पी न रही।
3: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
0: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वहीं रह जाती, आखिर एक महराजिन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे?
3: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ ना आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं, खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज़ और ख्वाहिश जाहिर की थी,

0: मगर उसने हमेशा यही कहा।
1: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी, हाँ आप भी, 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा। और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं?
0: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
2: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
1: तो लाकर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते? तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहाँ मिलेगी, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है, क्या पहनूं क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से।
0: यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपने दानिश्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं?
0: रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहाँ मिलते हैं? वह तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मादूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाट देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन, मायूसकून, गैर मुनसिफाना ख्यालात पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलोसोफर नहीं, तारिकुद्दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी आपने सुनी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर

0: सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहनें आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।
1: साथियों, आप सुन रहे थे दो बहनें कहानी का भाग दो। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब सुन रहे हैं हम एक गीत।
2: सुनते हैं ये गाना।

आनंद फिल्म का ये गाना था। और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है, क्या कहेंगे दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, तो अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना?
0: अब तो हमारे बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं जिसके कारण में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है, मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह है, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी, अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ ना सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं, वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं सही तरीके से,
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।

अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना, या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहाँ पे कि आपको अच्छा लगे, मिल के लोगों के साथ व्यायाम करना, या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी भी आई है।

0: चल हुआ या कुछ उठा पटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है, मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित हैं, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच पस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीज़ों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना ज़रूरी है, कुछ व्यायाम करना ज़रूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना ज़रूरी है और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्ज़ाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राज़ी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राज़ी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतज़ार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेके बहस होने वाली थी। उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो उन्हें ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
1: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रहे, लोग इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियाँ भी लेकर आती हैं।
0: जैसे कि
1: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है ख़ासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था, और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज़ करते हैं, चर्र चूँ, और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाज़ा खूब ज़ोर से आवाज़ करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है।
0: हाँ,
1: तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है और किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए,
0: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नुकसान ज़्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर हैं उस कमरे के।
1: और हमारी एक सखी हैं जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना

0: पोछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है, काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो पोंछ देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और इन सब चीज़ों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें, ख़ास तौर पे बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज़ बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत ज़रूरी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियाँ और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें, और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से ख़राब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब हम क्या कर सकते हैं?
0: गाना सुनवा सकते हैं, तो ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में,
1: और तो... जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है, तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है। और जो फंगस दिखाई देता है ख़ास तौर से सोफ़ा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल हैं, तो उसमें उसको ज़रूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती हैं, मदद करती हैं जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और
0: फर्नीचर के लिए सही कवर भी ज़रूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए। और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखा कर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो हवा लगेगी, जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
1: और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कपूर की टिक्की आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खास तौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी हैं जितने भी हमारे पास ये ज़रूरी सामान और कीमती चीज़ें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
0: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियाँ होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
1: खाना खाते हैं।
0: तो आज किस खाने की बातें करने वाले?
1: आज हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
0: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है।
1: जी, ये अलग तरह की रेसिपी है, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च, या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसे ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताज़ी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन, ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए।

0: कि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दूकस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा, जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
1: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है।
0: जी
1: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर लें, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर लें, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है। तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही
0: एक
1: होता
0: ही
1: है,
0: होता है जी।
1: पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो हमारी जो सखियाँ और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज़, गुलजार के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बताएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती कार्यक्रम।
1: वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा, जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए, और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।

0: यही रेडियो की आवाज,
1: क्या बात है,
0: यही आप लोगों की आवाज और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं नहीं सकते हैं, और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव ज़माने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है, और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
0: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी।
0: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है, और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
1: जी।
0: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
0: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहाँ बनी रहती है
1: जी।
0: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है, और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना ज़रूरी रहता है
1: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है?
0: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इन्फॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबर जाते हैं। दूसरी बात हुए कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: लेकिन वहाँ कहाँ भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफ़ी इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन होना महत्व का है
1: हाँ।
0: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना ज़रूरी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बढ़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है, और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल, तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफ़ी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीज़ें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट

0: को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
1: जी जी
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी,
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है।
1: जी जी
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी,
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं।
1: जी जी
0: लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही, ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी,
0: जैसे डायबिटीज़, जहाँ डायबिटीज़ के कारण काफ़ी लोगों को फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफ़ी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है।
1: जी जी जी
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं
1: जी,
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है
1: जी,
0: या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी जी जी तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी या क्या तरीका है?
0: राइट, सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को,
1: जी जी
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है, सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है, यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है
1: जी।
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है
1: जी।
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है। PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहाँ इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज़्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं
1: जी।
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं या अंदर यूरिन रह जाती है, सो ये सब चीज़ें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं, और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके।
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं।
1: जी जी।
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना।

0: करना है।
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं, तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: ज़रूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है।
1: क्या बात है।
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ,
0: दो आंखें बारह हाथ।
1: क्या बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त ज़रूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज़ के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की ज़रूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज़ यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज़ प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की ज़रूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।

0: राइट. सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है. एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना,
1: जी
0: या तो
1: जी
0: ऑपरेशन करना. जैसे मैंने बताया कि
1: जी
0: हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है. सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है. हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है. द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस.
1: जी
0: आजकल काफ़ी दवाइयाँ आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज़्यादा यूरिन रहती नहीं है. प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफ़ी आसानी और आराम मिलता है,
1: जी
0: जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और 5-रिडक्टेज इनहिबिटर. ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफ़ी बदलाव आ गया है.
1: जी
0: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई, तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है.
1: जी
0: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है, जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं,
1: जी हाँ
0: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीज़ें महत्व की. यूरिनरी ब्लैडर में काफ़ी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए. अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा.
1: जी जी
0: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए.
1: जी
0: पहले के ज़माने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था.
1: जी
0: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेज़र से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बढ़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है. आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रेज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है. ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सकें और पेशेंट को राहत दे सकें, ये कोशिश रहती है.
1: जी
0: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है. सो ये नई नई चीज़ें आई हैं. हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं,
1: जी जी
0: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीशन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं,
1: जी जी
0: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है.
1: जी
0: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफ़ी उसका प्रचार हो रहा है,
1: जी जी
0: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट.
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आजकल की जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए? क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज़ घबराता है कि अरे
0: जी
1: हमें
0: जी
1: 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
0: सो कुछ टेक्निक हैं जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट इज क्वाइट ऑल राइट. जो
1: जी
0: स्टैंडर्ड ऑपरेशंस है, जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेज़र से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है
1: जी
0: और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है. कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफ़ी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज़्यादा समय तक रखनी पड़ती है.
1: जी जी
0: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था वो अब नहीं रहा है. पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है.
1: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज़ थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं।
0: ओ
1: कौन सा
0: जरूर,
1: गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें.
1: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की
0: किशोर
1: आवाज़।
0: कुमार की आवाज, क्या गाना है.
1: जी सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सब को भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं, डायबिटीज़, वेट गेन, ये सब चीज़ों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ ज़रूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीज़ें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है।
0: जी, जी.
1: लेकिन ये सब चीज़ें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है
0: जी.
1: क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली असर करती हैं और उसकी कुछ असर ज़रूर प्रोस्टेट में होती है।
0: जी
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है।
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसानदेह है। तो डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है।
0: जी,
1: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीज़ें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर चेकअप रखना ज़रूरी है। सो ये चीज़ें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
0: जी जी यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए।
0: जी जी।
1: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी रहता है। लेकिन ज़्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है, जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
0: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा लोग?
1: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है।
0: जी,
1: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है।
0: जी, और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके?
1: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहाँ इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं,
0: जी हाँ,
1: कभी कभी वहाँ पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीज़ें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती हैं, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है।
0: जी जी।
1: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात है बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है।
0: जी, तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
1: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफ़ी लाइफस्टाइल चेंज होती है।
0: जी,
1: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर ज़रूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफ़ी एक्टिव है और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है। अब बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहाँ मुझे सुविधा मिलेगी, कहाँ मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा।

0: साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है.
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े
0: दैट्स
1: हुए हैं,
0: राइट.
1: तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए. कौन सा गाना?
0: जरूर. एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम
1: तुम
0: रहती
1: रहती
0: हो.
1: हो, ब्लैक पेन फिल्म
0: काफी
1: का गाना.
0: यहाँ जी रोमांचिक गाना है,
1: जी जी
0: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है.
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे,
0: हाँ
1: तो
0: जी.
1: यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे.
1: जी
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग थिंग
1: हाँ
0: कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है.
1: जी जी
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत ज़रूरी हो जाता है.
1: जी
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरापी भी देते हैं.
1: जी
0: सो म्यूजिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस.
1: जी जी
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है.
1: जी तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में
1: बंद हो
0: सोचेंगे
1: जाएगा. जी बिल्कुल, तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का.
0: नहीं.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की, और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है, रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये क्या वजह हो सकती है, और क्या कुछ सावधानी रखें कि स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना ज़रूरी रहता है कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं।
0: जी।
1: दूसरी बात, लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे,
0: जी।
1: रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज़्यादा यूरिन जमा हो के वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज़्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना ज़रूरी हो जाता है।
0: जी।
1: सो काफ़ी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती है।
0: जी।
1: सो ये एक बड़ा विषय है, जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी बाकी भी ऐसे कॉजेज है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं।
0: जी।
1: कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस के पैटर्न रहती है, और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं। सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी।
1: तो ये सब चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होता है। और ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होके आ जाते, कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है,
0: जी।
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं। इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं?

0: हैं, एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज़्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज़्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं
0: जी।
1: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफ़ी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज़्यादा यूरिन जमा होने लगता है तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है
0: जी।
1: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफ़ी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल
0: जी।
1: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए
0: जी।
1: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज़ वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफ़ी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है
0: जी।
1: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफ़ी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस कि काफ़ी लोग मानते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए, सच बात है पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है
0: जी।
1: तीसरी बात जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफ़ी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना ज़रूरी हो जाता है
0: जी।
1: और आजकल काफ़ी दवाइयाँ आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज़्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा एक्सरसाइजेस ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज़्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकें। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है
0: जी। तो डॉक्टर साहब आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
1: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी ज़रूरी है
0: जी।
1: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है
0: जी।
1: दूसरी बात समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से किडनी स्टोन से जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है
0: जी।
1: देयर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है। सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है
0: जी।
1: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना ज़रूरी है, और थर्ड फिर ज़रूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं
0: जी।
1: वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना ज़रूरी है क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है
0: जी। जी
1: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज़ को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है, तो ये काफ़ी चीज़ों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट ज़्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल

0: चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफ़ी लोगों को राहत मिल जाती है. अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट और काफ़ी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहाँ किसी को हम इसके बारे में बताएं. ये गलत बात है. आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है.
1: बिल्कुल. अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और बड़े ही जानकार डॉक्टर हैं. डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम.
0: जरूर.
1: कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है, बहुत अच्छा गाना है और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा.
1: जी, सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में.
2: झूठ

डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज़्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान।

0: तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं, क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है, सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में,
0: जी
1: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है,
0: जी
1: क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयाँ ऐसे यूज़ करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना ज़रूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी ज़रूरी है,
0: जी
1: क्योंकि कभी कभी कहाँ से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है।
0: जी
1: सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं।
0: जी इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये सही नहीं है,
0: जी
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है।
0: जी
1: हर पेशेंट, वेदर इज मेन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है।
0: जी
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है।
0: जी
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये
0: बिल्कुल
1: जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है।
0: जी बिल्कुल
1: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट।
0: जी
1: सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो,
0: बिल्कुल
1: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनी बडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर ज़रूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में ज़रूर हम एडवाइस दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर
1: जी
0: ऐसी स्थितियाँ बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है तो डॉक्टर की शरण लें और जांच ज़रूर करवाएं।
1: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: चीज़ें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन
0: शर्म
1: इससे
0: और
1: शर्म के
0: संकोच,
1: मारे में कि
0: जी
1: ये बात
0: बिल्कुल
1: हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जरूर, लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
0: ओके
1: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी
1: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं,
0: ओके
1: कि जहाँ पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से

0: से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है,
1: ओहो
0: ज़्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज़्यादा करके वहाँ स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से, ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए, इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
1: ओ
0: इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या
1: जी
0: जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए।
1: जी
0: सो ये चीज़ें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स ज़रूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है।
2: जी दोस्तों, सेहत नामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेश को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनज़र 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन करने वाली पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार 3 प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विवादित पुस्तकों में पर्सनैलिटीज एंड एजेंट्स ऑफ J&K और ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दों का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमन कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि मुलाकात में संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने और भारत न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से जारी संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर जोर दिया गया। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री कानो कोजी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव व्लेडिस्लाव बार्तोसेजेस्की और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर सचिव माइकल बरोंस्की से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वियतनाम के फूक्वेक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम।

0: नहीं पड़ता।
1: जी, बहुत ही बढ़िया बात है। और आपसे एक ये है कि कविता लिखने की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई?
0: कविता लिखने की शुरुआत कोई ऐसी बहुत प्यारी सी कोई कहानी हो या कोई बड़ी घटना हो जिससे जीवन बदल गया। मुझे लगता है ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं महापुरुषों के जीवन में ही होती हैं। जैसे गांधी जी के जीवन में उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया था और फिर वो गांधी जी बने। मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है, बहुत सरल सी सरल सा जीवन है। जो मुझे बहुत हल्का सा ध्यान है कि लिखने का शौक शायद बचपन से ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब मैं धर्मशाला आया था तो उस और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, आप कह सकते हैं कि उस और थोड़ा ध्यान देना मैंने ज्यादा शुरू किया था। तो ऐसी कोई एज सच कहानी नहीं है, बस किसी दिन किसी रोज माँ सरस्वती की कृपा हुई होगी और कलम उठी होगी, उससे मैंने कुछ लिखा होगा। पहले कुछ अच्छा लिखा होगा, थोड़ा और उसको निखारने का प्रयास किया होगा, फिर बाद में उसको कविता कहना शुरू कर दिया तो वो कविता हो गई होगी।
1: जी, इतिहास और कविता की बात करें तो दोनों अलग अलग क्षेत्र माने जाते हैं, फिर भी आपने इसे साथ कैसे रखा, कविता और इतिहास?
0: ये क्षेत्र अलग अलग माने जाते हैं पर ये अलग अलग क्षेत्र हैं नहीं। आज जितना भी इतिहास हम जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो किसी समय जो है वो साहित्य, और उसी साहित्य से निकाल कर इतिहास जो है वो बनता है। मैं ऐसा मानता हूं कि इतिहास में भावना जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि आपको न्यूट्रल रहना है। हालांकि इतिहास कभी न्यूट्रल हो नहीं पाता है, लेकिन न्यूट्रल रहने की आप एक कोशिश करते हैं और उस कोशिश में भाव शून्यता जो है इतिहास देखने को मिलती है। और साहित्य जो है वो भावनात्मक प्रक्रिया है, भावनात्मक संसार है, उसमें भावना होती है, प्रेम है, विराई, ये सब कुछ इतिहास में भी होगा लेकिन उसमें भावना कम होगी। लेकिन कविता में ये सारे के सारे भाव जो है उमड़ उमड़ कर बाहर आएंगे। तो ये दोनों अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा साहित्य अच्छे इतिहास को जन्म देता है, अच्छे इतिहास को शेप देता है। जितने अच्छे से किसी साहित्यकार ने, किसी लेखक ने उस समाज का विवरण दिया होगा, उस बहुत अच्छे से समाज को समझाया होगा, उतने ही अच्छे से आपको बाद में इतिहास जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज जो कवि हैं, कहानीकार हैं, वो कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, जितने अच्छे से आज के समय को वो लिखेंगे अपनी कलम से, जितना अच्छा समाज का चित्रण करेंगे। अब जब समाज का अच्छा चित्रण कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल समाज की अच्छी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, लेकिन बुराई को लिखना, समाज की बुराई को लिखना, समाज में जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको भी बड़ी सुंदरता से लिखना। जितनी सुंदरता से एक साहित्यकार लिखेगा उतना ही अच्छा जो है आगे चलकर इतिहास बनेगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं। तो साहित्य और इतिहास अलग नहीं है, एक है, और शायद इसीलिए मेरी रुचि जो है दोनों में रही है। दूसरा, इतिहास के साथ भी और लिटरेचर के साथ भी संस्कृति का एक बड़ा गहरा जुड़ाव होता है। कवि जो होता है वो आप कह सकते हैं कि कहते हैं समाज का दर्पण होता है, तो वो समाज के बारे में, उस समाज की जानकारी, अपने आसपास की संस्कृति और जो उसका सामाजिक परिवेश है, उस परिवेश से ही उसको लिखने की प्रेरणा आती है, उसको लिखने के लिए आइडियाज आते हैं। तो वो इसीलिए, और सेम इतिहास में भी संस्कृति का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत इम्पैक्ट करता है इतिहास को। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो इस जुड़ाव के कारण मैं दोनों के साथ जुड़ा रहा हूँ, और यही आप कह सकते हैं कि इसीलिए साहित्य और इतिहास दोनों में मुझे आनंद आता है। वो
1: जी
0: कहानियाँ ही साहित्य और इतिहास लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
1: जी जी तो शिवाजी, आपकी कविताओं की बात करें तो आपकी कविताओं में सबसे ज्यादा कौन से विषय, किस प्रकार के विषय होते हैं?
0: देखिए, जब हम कहानी लिखते हैं उसमें थोड़ा सा लिखने वाले के पास स्वतंत्रता ये होती है कि वो बैठकर सोच पाता है कि किस विषय पर ज़्यादा फोकस करेगा। उसमें पर्यावरण ज़्यादा आने वाला है, सामाजिक कुरीति को वो ज़्यादा बताने वाला है। बाद में विद्वान उससे बहुत कुछ निकालते हैं, बाल की खाल उतारते हैं, लेकिन जब लिखने वाला जो व्यक्ति है, और ये मेरा व्यक्तिगत कहना है, हो सकता है जो वरिष्ठ लोग हैं, विद्वत जन हैं, वो इससे इत्तेफाक ना रखे हों, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि कहानी में आपको एक स्वतंत्रता रहती है, आप विषय का चयन करते हैं, लेकिन कविता जो है वो स्वतः आती है। आप कहानी के लिए प्रयास करते हैं, एक लंबा समय सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार करने के बाद कहानी निकलती है, लेकिन कविता जो है वो स्वतः आती है आपके अंदर से। हो सकता है आपने बहुत लंबा सोचा हो, उसमें विज्ञान के जो लोग हैं वो अच्छे से बता पाएंगे कि किस प्रकार से ये मनुष्य का जो दिमाग है किस प्रकार से काम करता है, लेकिन भावनात्मक मंच पर उस पर देखा जाए तो कविता स्वतः आती है, स्वतः एक विचार आता है और उस विचार को आप कह सकते हैं जैसे ऊन के धागों को आप पिरोते हैं, वो जो ताना बाना बनता
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो वो ताना बाना कविता है। तो आप ऐसा किसी विषय में बंद कर यही विषय मैं लिखता हूं, वैसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रेम पर, विरह पर, पर्यावरण पर, सामाजिक स्थितियों पर, कई बार राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं उन पर लिखने में आनंद आता है। तो जब जो मन में आता है तो स्वतः ही कविता एक रूप जो है वो ले लेती है।
1: तो आपसे एक सवाल और है कि

0: आपको क्या याद है कि आपकी जो पहली कविता कौन सी थी?
1: पहली कविता मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा हल्का सा याद है कि मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था तो एक कहानी लिखने की कोशिश की थी, और उसमें मुझे बड़ा हल्का सा याद है कि खजाना लेकर जो कहानी के पात्र हैं वो लेकर जा रहे हैं, और वो नाव जो है वो डूब जाती है और खजाना जो है वो उसी में डूब जाता है। ऐसी एक कहानी रचने का प्रयास जो था वो मैंने किया था। ये चौथी पांचवी की बात होगी, तो वो ना कहानी मेरे पास आज जीवित बची है, ना ही उसकी स्मृति कोई उस प्रकार से शेष है। जो कविता पहली बार लिखी होगी, या जिसे मैं कविता कहूँ कि वो कविता है, तो वो एक कविता है आवारा। हाँ तू भी निकल आधी रात को, पर तू क्यों चांद बन बैठा और मैं आवारा। तो ये कविता का उसका कुछ पंक्तियाँ थी। ये पहली कविता मैंने लिखी थी, शायद 2012-13 के करीब ये कविता लिखी होगी।
0: जी। और पिछले दिनों आपकी जो सोशल मीडिया में एक कविता थी, बहुत ही वायरल हुई थी, तो उस विषय में वो कौन सी कविता थी?
1: जी, वो कविता थी, मैं ताजमहल बोल रहा हूँ, मैं ताजमहल बोल रहा हूँ, और ये झूठ है कि मुझे किसी शासक ने बनाया है अपनी बेगम के लिए। मैं ताजमहल बोल रहा हूँ और ये झूठ है कि मुझे किसी बादशाह ने बनाया है अपनी बेगम के लिए। मुझे तो बनाया है अपने हाथ खोकर मजदूरों ने अपने परिवार को चंद निवाले खिलाने के लिए। तो ये कविता थी, एक पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट
0: जी
1: में
0: जी
1: कहना तो संस्कृति पे था, लेकिन उन्होंने उन्हें पता था मैं कविता लिखता हूँ, तो उनके आग्रह पे ये कविता कही थी।
0: तो आपसे एक सवाल और है कि आजकल जो सोशल मीडिया के दौर में हर कोई लिख रहा है, आपके अनुसार असली कविता की पहचान क्या है?
1: जितनी मेरी समझ है, इसको मैं दो भागों में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सोशल मीडिया पर जो कविता लिखी जा रही है, देखिए, कविता जब अपने शिशु रूप में होती है, एक विचार जैसा ही होता है, वो विचार आया और मैंने झट से उसको फेसबुक पे लिख दिया, और चंद लाइक्स और कमेंट से मैंने उसको घोषित कर दिया कि ये एक बहुत बेहतरीन कविता है, कि 10,000 लोगों ने इसे पसंद किया है, तो अब ये बहुत अच्छी कविता है। तो वो कविता का पैमाना नहीं होता, किसी अच्छी कविता का या अच्छी कहानी का वो पैमाना नहीं होता। लाइक्स इसको तय नहीं करते हैं, लेकिन फेसबुक की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल लाइक्स और कमेंट ही हैं जो तय करते हैं कि क्या कविता होगी। अच्छी कविता आप उसी सोशल मीडिया में, उसी इंटरनेट के जो पूरा सागर है उसमें डुबकी लगाएंगे, तो बहुत सारी अच्छी कविताएं बड़े बड़े रचनाकारों की आपको मिल जाएंगी। अब मैं नाम भी लूंगा तो कालिदास का, गालिब का, मीर का, वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे, बहुत सारे लोगों का नाम मैं लूंगा, महर्षि व्यास का, तुलसीदास का, कई नाम ऐसे लिए जा सकते हैं जो बहुत अच्छी कविता है। क्यों है? उसके उत्तर अलग अलग लोग अलग अलग देंगे, अलग अलग लोगों पर उन कविताओं का, उन कहानियों का एक अलग असर है। तो दो तरह से इसको आप देख सकते हैं कि जो पाठक पढ़ने वाला है वो उसको किस प्रकार से ले रहा है, वो उसको किस प्रकार से देख रहा है, उसका अर्थ क्या निकाल रहा है। अगर वो उसके जीवन की किसी घटना को छूता है, उसके जीवन के किसी घटना से वो प्रेरित होता है, उस कविता से वो प्रेरित होता है, हो सकता है कि ग्रामर की दुनिया में या जो भाषाविद हैं उनके ज्ञान के जो पैमाने हैं, मानक हैं, उस मानक में वो कविता अच्छी ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन का दृष्टिकोण बदल रही है, तो वो बहुत अच्छी कविता हो जाएगी। एक कविता वो है जो हो सकता है किसी व्याकरणविद के, किसी जानकार के मानक में बहुत उत्तम स्तर की कविता हो,
0: जी
1: लेकिन उस कविता ने आज तक किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन ना किया हो। तो अब यहाँ पर कविता किसे अच्छी कहा जाए? तो मेरा मानना है जो कुछ चेंज ला सकती है, जो कविता कुछ चेंज ला रही है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन में अगर वो कुछ चेंज ला पा रही है, उसके जीवन को कोई मोड़ दे पा रही है, कोई कोई अर्थ निकाल कर दे रही है पाठक वर्ग को, तो वो एक अच्छी कविता है। और दूसरी जो भाषाविद व्याकरणविद कहेंगे उनके अनुसार जो है वो मानकों के हिसाब से अच्छी कविता है, तो दोनों ही अच्छी कविता है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि बड़े बड़े साहित्यकार जिन रचनाओं को कूड़ा रचना कहते हैं, ये टर्म जो है प्रचलित है आजकल, वो कूड़ा रचना भी कई बार बहुत अच्छे रचनाकारों को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। हो सकता है जो रचना आज के परिवेश में बहुत बेहतरीन ना मानी जाती हो, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद जब कोई उस किताब को उठाएगा तो वो कहे अरे वाह, इससे बेहतरीन तो कुछ
0: जी
1: लिखा ही
0: जी
1: नहीं जा सकता है। तो अच्छी रचना क्या होगी, इसका कोई एक स्पष्ट उत्तर नहीं हो सकता। ये बहुत अब्स्ट्रैक्ट सा उत्तर हो जाएगा कि नहीं, ये तरीका आप करेंगे, ये आप फॉलो करेंगे, तो ये अच्छी कविता है। वो अच्छा उत्तर हो सकता है, लेकिन अच्छी कविता जो है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता ही अपने आप में एक अच्छी कविता जो है वो बनेगी।
0: जी,
1: जी
0: तो आपकी कविताओं की बात हुई और आप कहानियाँ भी लिखते हैं,
1: जी
0: किस प्रकार की कहानियाँ?
1: कहानी बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि और कामों की भी व्यस्तता रहती है। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं मनमौजी कवि हूँ, कि मेरा जब मन करेगा, जब मेरी इच्छा होगी, तो मैं हो सकता है कि 3-4 दिन साहित्य में किताब उठा के पढ़ूँ लिखूँ, और मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैंने साल भर में भी कुछ नहीं लिखा है। अभी जैसे मैं पिछले 1-2 सालों की बात करूँ तो मैंने उसमें पूरे वर्ष भर में शायद 1-2 पंक्तियाँ लिखी होंगी, लिखा ही कुछ नहीं है, पुरानी रचनाएँ ही चल रही हैं। वो मनमौजी सा कवि हूँ। कहानियों में भी यही स्थिति है कि मन करेगा, कोई विषय लगेगा कि इस पे कहना चाहिए, मेरी कहानी के माध्यम से कोई विषय आना चाहिए, छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की आम जनजीवन में, तो उन समस्याओं का चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से करने का प्रयास जो है मेरा रहता है।
0: कहानियों के कुछ नाम जो लिखी हूँ अभी।
1: अभी एक कुछ आई थी एक पुस्तक, उसमें 25 के युवा साहित्यकार हैं, उनकी कहानियां, मेरी भी कहानी है, तो एक मैंगो मैन करके उसमें एक कहानी है। तो वो कहानी है एक आम आदमी की, बहुत छोटी सी समस्या है, उसकी पानी की टंकी जो है वो भर नहीं पाती है, तो वो उस पानी की टंकी को देखता है और उसी के इर्द गिर्द वो पूरी कहानी मैंने बुनी है।
0: तो शिवाजी, आपसे प्रश्न है कि क्या कविता समाज में बदलाव लाने की ताकत रखती है?
1: देखिए, समाज में बदलाव कविता और कहानी नहीं, व्यक्ति लाता है। व्यक्ति उस कविता और कहानी से प्रभावित होता है, या उसमें वो शक्ति जो है वो ये कविता और कहानी लाती है। अब आपकी बात का अगर स्पष्ट उत्तर देना हो तो बिल्कुल हाँ, कविता कहानी जो है वो परिवर्तन लाती है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। लेकिन मैं कई बार अकेले बैठते हुए सोचता हूँ कि आखिर अंतिम वो कौन सा कवि था जिसने अपनी कविता के बलबूते पर समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया हो। तो कोई बहुत ऐसे बहुत सारे नाम जो है मुझे ध्यान में नहीं आएंगे, लेकिन एक कवि की किसी कहानी और किसी कविता को मंच पर केंद्र में रख कर किसी व्यक्ति ने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया होगा। तो कविताएं कहानियां जो हैं वो माध्यम बनती हैं बहुत बहुत बड़े परिवर्तनों का। लेकिन जैसा कि कविता के लिए कहा जाता है कि कविता पूरी तब होती है जब वो पाठक वर्ग के पास पहुंचती है, जब उसे पढ़ने वाला पढ़ता है तो वो अपना एक अर्थ देकर उसे पूरा करता है। कविता तब पूरी नहीं होती जब वो छप जाती है या कवि जब उसे लिख देता है,
0: जी
1: कविता तब पूरी होती है जब उसे एक व्यक्ति पढ़ता है और उसे एक अर्थ देता है, वो अर्थ उसे पूरा बनाता है और वो जो अर्थ है वो परिवर्तन लाता है। तो कविता कहानियां हाँ परिवर्तन लाती हैं, कवि कितना परिवर्तन लाते हैं ये थोड़ा सा इस पर लंबी चर्चा हो सकती
0: जी
1: है।
0: जी तो ये तो हुई कविताओं की बात। अब बात करते हैं आपके रिसर्च के सफ़र की, जो इतिहास में पीएचडी करने का विचार जो था, आपको कैसे आया? आप तो कवि ही हैं।
1: ऐसा कोई कि मैंने बहुत पहले से चिंतन किया हो कि मुझे ये करना, ऐसा नहीं है। कविता ही, कहानियां ही इसका माध्यम बनी कि मैं इस क्षेत्र में गया। वो क्यों बनी? लोक साहित्य पे मेरी एक रुचि थी, उसके रुचि है। इसके साथ ही जो हमारी रीजनल हिस्ट्री है, नेशनल हिस्ट्री भी और वर्ल्ड हिस्ट्री भी, इनमें आनंद आता है। कहानियां ही तो हैं, इन कहानियों को सुनने का, जानने का, पढ़ने का में आनंद आता है। अब ये आपको पेट पालने का भी साधन हो सकती है और आपको इन दी एंड 3 वक्त का खाना जो है वो पूरा करना है, कभी
0: जी
1: कविता पढ़कर पेट नहीं भर सकता। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद नहीं है किसी वेस्टर्न राइटर ने ये कहा था कि कविताओं को, या कहानियों के लिए कहा था, या शायद कविताओं के लिए कहा था कि ग्रामेटिकली उनको बांध देना जो है वो उनकी स्वतंत्रता छीनना है। तो मैं भी उस बात पर इत्तेफाक रखने वाला व्यक्ति हूँ, हालांकि मैं जरूर कहता हूँ कि व्यक्ति को छंदबद्ध कविताएं लिखना और जो फॉर्मूले हैं, मीटर है, बहर है, उसमें लिखना आना चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि व्यक्ति स्वतंत्र जो है वो जो छंद मुक्त कविताएं उनमें ज़्यादा स्वतंत्र रहता है, कि उनमें वो होता है जो वो सच में कहना चाहता है, उसमें लाग लपेट नहीं होता है। तो इसीलिए कविताओं ने मुझे ये तो समझा दिया कि मुझे हिंदी में नहीं जाना है, तो कविता के साथ जुड़ता, साहित्य के साथ जुड़ता कौन सा एक सब्जेक्ट हो सकता है, तो इतिहास बड़ा करीबी सब्जेक्ट है। तो उस नाते से मैं इतिहास में पीएचडी करने के लिए चला गया, आप ऐसा कह सकते हैं। इतिहास से प्रेम था, इतिहास की उन कहानियों से प्रेम था, उसमें बहुत कुछ सोचने को, विचारने को एक मौका मिलता है इतिहास में, चीज़ों को अलग तरह से। जैसे मैं कहता हूँ कवि भावनाओं में रहता है, इतिहासकार उतना भावनाओं में नहीं रहता है। तो मेरी कविता और मेरा विरोध, विद्रोह, क्रांति जो है वो भावनात्मक ना हो, वो प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, तो इतिहास मुझे उस दिशा में, उस दृष्टि में बढ़ने की एक जो रास्ता है वो बताता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो धर्म कहा जाता है, कि धर्म जो है विवेक आपका एक तरह से, वो आपको बताता है क्या अच्छा है।

0: है, क्या बुरा है। वैसे ही कविता में इतिहास जो है वो मेरा धर्म बन जाता है, तो मुझे वो भावनाओं में बहने नहीं देता है बहुत ज़्यादा, वो मुझे धरातल पर रखता है, प्रैक्टिकल जो अप्रोच होनी चाहिए उसकी
1: जी
0: और
1: जी
0: बढ़ाता है।
1: तो हमारा एक सवाल और है कि अगर आपको किसी एक ऐतिहासिक व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे?
0: बड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि आपने एक ही ऑप्शन दिया, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे ऑप्शन चाहिए थे, और क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है तो मुझे लगता है
1: जी
0: ऑप्शन लिए जा सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ओशो हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से मैं मिलना चाहूँगा, इससे पूर्व में बहुत सारे लोग हैं, कबीर से मुझे मिलना, रहमान से मैं मिलना चाहूँगा, उससे पीछे चले जाएं वेद व्यास से, और इस तरह से बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ जिनसे अगर मिलने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि मृत्यु उपरांत अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मरने के बाद लोगों की आत्माएं या उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो पहुँचती है और वहाँ पर ये लोग होंगे, तो मैं बहुत सारी बातें इन लोगों के साथ करना चाहूँगा।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बहुत सारे नाम ऐसे मैं बता सकता हूँ इनके अतिरिक्त भी।
1: कभी आपको ऐसा आभास हुआ है कि आभास तो नहीं कह सकते, जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को अचानक कोई कविता दिमाग में आई हो
0: ऐसा मुझे लगता है हर
1: और
0: जी
1: सुबह आप उसको भूल गए हो या याद रखी हो या
0: जी
1: कागज़ पे लिख ली हो?
0: ऐसा मुझे लगता है जो भी कविता लिखता है उसके साथ ऐसा जरूर होता है। कई बार सोते सोते मतलब ऐसी ऐसा विचार या ऐसी रचना दिमाग में आएगी, रचना तो खैर वो नहीं होती है, अपनी शैशव अवस्था में होती है, बहुत प्यारा सा वो थॉट होगा, लेकिन समस्या वही है, आप बड़ी दुविधा में होते हैं, आप उठ नहीं पा रहे होते हैं और आपको लगेगा कि सुबह तक मैं इसको याद रखूंगा। अब सुबह आपको बस ये याद होता है कि बड़ी अच्छी पंक्ति जो है वो आपके ध्यान में आई थी, लेकिन सुबह तक वो एक आध शब्द ही बच गया होगा, तो वो स्वप्न के साथ ही उस कविता का जो है वो अंत हो जाता है। कई बार मैंने ऐसा जरूर किया, एक दो बार ऐसा हुआ है कि कोई कविता जो है वो रात को ध्यान आई और मैंने उसी समय अपने आप को मोटिवेट किया है कि मुझे ये लिख लेनी है कहीं पे कागज़ पे, तो मैंने उठ के उसको लिखा भी है। सुबह उठ के मुझे लगा हो कि इतनी भी कुछ खास नहीं थी, अगर छोड़ देता तो कोई बड़ा विषय नहीं था, तो मुझे लगता है वो जो थॉट आता है ना, वो प्रसन्नता उस थॉट की है कि सोते सोते भी मैं सोच पा रहा हूँ, वो
1: जी
0: उस थॉट की प्रसन्नता है। शायद कविता का उतना उसमें रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये स्वप्न में होता है कि इस प्रकार से रचनाएं आती हैं।
1: तो शिवाजी, लिखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? लोगों से, किताबों से या अकेलेपन से?
0: ये सारी चीज़ें ही प्रेरित करती हैं। व्यक्ति समाज से दूर नहीं होता है, तो समाज ही उसे सिखाता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। अब आपके साथ चर्चा हो रही है, कोई अच्छी बात निकल कर आ जाएगी तो वो भी एक थॉट है, तो वो प्रेरित
1: जी
0: करेगा ही कि कुछ कहानी बनाई जाए या उसको एक कविता का रूप दिया जाए। तो आसपास की चीज़ें ही जो हैं वो हमें प्रेरित करती हैं, ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, छोटी छोटी घटनाएं होती। मेरा मानना है जब आप देखना शुरू कर देते हैं, जब आप गहराई से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, उन पे प्रश्न करना शुरू करते हैं, चीज़ों को आप जैसे आपको मिल रही हैं आप वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो अपने आप विचारवान हो जाते हैं, विचार की जो धारा है वो आपके शरीर में प्रवाहित होना शुरू
1: जी
0: हो
1: जी
0: जाती है। और जब आप विचार करना शुरू कर देंगे और साथ में पढ़ेंगे भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप विचार करने के साथ पढ़ें, क्योंकि विचारों पर लगाम लगना बहुत आवश्यक है, बिना लगाम के जो विचार हैं वो पूरे समाज के लिए घातक हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि इंजीनियर्स जब काम करते हैं, उस इंजीनियर का अगर बनाया हुआ प्रोटोटाइप फेल हो जाए तो उसको क्वेश्चन, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन विचार करने वाले लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर उनके विचार पॉपुलर उनके मरने के बाद हो रहे होते हैं,
1: जी
0: तो अगर चल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो किसको पूछेंगे। तो विचार को लगाम रखने के लिए अध्ययन आवश्यक है, तो अध्ययन के साथ ऑब्जर्व करना, बातचीत करना, भ्रमण करना, भ्रमण करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कई बार कहता हूँ जितना आप भ्रमण करेंगे, तो भ्रमण करने से आपको नए विचार, नई चीजें, और उनको एक्सेप्ट करना जो आप नहीं मानते हैं, जो सत्य जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, पूरी जिंदगी आपने किसी सत्य को ऐसा सोचा हो कि यही अखंड सत्य है, उस अखंड सत्य को भी प्रश्न करना, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये चीजें आती हैं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति खुद ब खुद लिखना जो है वो सीखता है या आता है।
1: एक सवाल हमारा और है कि अगर आपको कविता और इतिहास में से सिर्फ एक चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे?
0: आप बहुत कठिन प्रश्न जो है वो दाग रहे हैं। दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं कविता चुनूंगा।
1: जी
0: उसका कारण ये है कि कविता अपने आप में इतिहास जो है वो बनती है वर्तमान का, क्योंकि वर्तमान के बारे में कविता कहती है, वर्तमान के बारे में वो बताती है, वर्तमान का दर्पण है, और जो इतिहास है वो पुरानी बातों की बात करता है। तो जब आप पिछली बातों पे, हो सकता है कि उसको देखने के लिए, तो उसके बारे में पहले ही बहुत

0: सारे लोग कह चुके होते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा होता है। पुराने समाज को समझाने वाले उस समाज के लोग भी और इस वर्तमान समाज के लोग भी बहुत सारे हैं, मुझसे बेहतरीन है। लेकिन जो कविता है वो वर्तमान को समझाएगी और वर्तमान में मैं कैसे समाज को देख रहा हूँ, जीवन को मैं कैसे देख रहा हूँ, संस्कृति को कैसे देख रहा हूँ। तो बिल्कुल वो एक नया अनुभव है, अलग अनुभव है। इसीलिए अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं कविता चुनूंगा, और कविता अल्टीमेटली मुझे इतिहासकार भी बनाई देगी।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात है शिवाजी। तो अब हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई छोटी सी कविता या कुछ पंक्तियाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: जी एक कविता है। ये कविता जो है वो बात कर रही है घर से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में।
1: जी
0: कविता का शीर्षक नहीं बोल रहा हूँ, सीधे कविता पे आ रहा हूँ कि अपने घर पर पहाड़ की गोद में, अपने घर पर पहाड़ की गोद में उतावलापन दिखाने वाली अलहड़ नदियाँ, अपने घर पर पहाड़ की गोद में उतावलापन दिखाने वाली अलहड़ नदियाँ किराए के मकान में गंभीर चित्त वाली हो जाती हैं। अपने घर पर पहाड़ की गोद में उतावलापन दिखाने वाली अलहड़ नदियाँ किराए के मकान में गंभीर चित्त वाली हो जाती हैं। उनकी रफ्तार कुछ कम होती है, उनकी रफ्तार कुछ कम हो जाती है, वे शांत हो जाती हैं। मर्जी से बहने निकली नदियाँ अनुशासन दिखाने लगती हैं। पत्थरों को तोड़कर भागने वाली अब रेत को सहलाती हैं, उसमें जीवन बो देती हैं। उस जैसी कई नदियाँ अपने घर से दूर बहती हैं। अलग-अलग परिवेश से आई ऐसी कई नदियाँ शहर में पहुंचकर एक जैसी हो जाती हैं। कुछ भीड़ में खो जाती हैं, कुछ समाज द्वारा पी ली जाती हैं, कुछ बची हुई नदियाँ सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं। नदी बस अपने घर पहाड़ पर नदी होती है, वहाँ से निकल जाने के बाद वे सब कुछ होती है, नदी नहीं होती। वे सब कुछ होती है, नदी नहीं होती।
1: बहुत ही शानदार बातचीत रही आपके साथ। आखिर में युवा दर्पण सुन रहे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: ये अब अपने बराबरी और अपने साथ के लोगों को संदेश देना बड़ा जटिल काम होता है, क्योंकि पता चले 10 साल बाद वो संदेश मैं ही फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको कहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ कहना हो या आग्रह करना हो तो मैं ये कहूँगा कि अध्ययन कीजिए। किसी भी चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट मत कीजिए जैसे वो आपको बताई गई है या दी जाती है, लेकिन उसके परिवर्तन करने के लिए तभी आप पूरा दम लगाइए जब उस परिवर्तन को करने के बाद आपके पास उसकी जगह पर कोई एक अच्छी चीज़ रखने के लिए हो। यानी कि आप उस परिवर्तन का हिस्सा बनिए जो उस चीज़ को हटाकर उसकी जगह कोई अच्छी चीज़ रख रहा हो। ऐसा आपको कार्य जो है वो करना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है अध्ययन कीजिए, भ्रमण कीजिए। सोशल मीडिया की हर बात को वैसे ही लेना आवश्यक नहीं है जैसा आप लेते हैं। उस पर प्रश्न कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, और जब आप ये सब करेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित है युवाओं के हाथ में। तो इसी आशा के साथ मुझे लगता है कि
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शब्दों की ताकत और इतिहास की समझ कैसे एक युवा को समाज से जोड़ती है। हमारे आज के मेहमान शिवा पंचकरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, देने के लिए, मंच देने के लिए।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। फिर मिलेंगे नई प्रेरणा और नई कहानी के साथ। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:56 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:30 पर किसान बागवान भाई बहन सुनेंगे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। शाम 7:10 पर सुनिएगा खेती बाड़ी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। रात्रि 8:30 पर देश गान सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही संगीतकार प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। रात्रि 10 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9, रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, और रात्रि 11:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
1: एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
4: लकी हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज शिमला में ऊर्जा विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि इसे अप्रैल 2027 तक शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पावर हाउस का करीब 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 1579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। इससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष करीब 900 करोड़ रुपए का योगदान मिलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के आधार को सुदृढ़ करने के साथ साथ युवाओं को नशे जैसी बुराई से बचाने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने आज राजकीय महाविद्यालय सोलन में डिजिटल पुस्तकालय के शुभारंभ अवसर पर कहा कि युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए नशा मुक्त हिमाचल अभियान आरंभ किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों विशेषकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शांडिल ने कहा कि इस पुस्तकालय के माध्यम से महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण और समृद्ध होगा। सोलन जिला परिषद के चुनाव आज सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें भाजपा की कुमारी शीला को अध्यक्ष और पंकज शर्मा को

0: उपाध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान भाजपा के जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे, जबकि कांग्रेस के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये परिणाम केवल जिला परिषद का चुनाव नहीं बल्कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का स्पष्ट संकेत है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के सत्ताबल, धनबल और प्रशासनिक दबाव के बावजूद 8 जिलों में से 7 में भाजपा समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनावों के परिणाम से ये स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को अस्वीकार कर चुकी है। वहीं सोलन जिला परिषद में भाजपा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने जाने पर सांसद सुरेश कश्यप ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस जीत से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जनता निराश है।
1: जीत का यह क्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है। अभी तक जो 7 जिला परिषद के नतीजे आए हैं उसमें 6 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, अब 7वीं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक कब्जा हुआ। ये जो जीत है ये कार्यकर्ताओं की जीत है और जिस प्रकार से 3.5 सालों में इस सरकार की जो नाकामियां रही वो आज उजागर हो गई है।
0: राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने राज्य में सतत कृषि को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण संस्थाओं को सुदृढ़ करने और ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई है। शिमला में आज नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक विवेक पठानिया ने ग्रामीण ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बैंक के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4,213 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त वितरण किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.3% अधिक है। विवेक पठानिया ने बताया कि नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने 3 पारंपरिक उत्पादों रणसिंघा, हिमाचली गलीचा और हिमाचल वुडक्राफ्ट के GI पंजीकरण में सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि GI टैग प्राप्त चंबा चप्पल की बाजार संभावनाओं का विस्तार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम की हिम बस कार्ड योजना के तहत सिरमौर जिले में अभी तक 10,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। निगम के नाहन डिपो के अड्डा इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 29 श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।
2: सरकार द्वारा हिम कार्ड की स्कीम चलाई गई है। हमारे नाहन क्षेत्र में ये लगभग 10,200 के करीब कार्ड बन चुके हैं। लगभग 29 श्रेणियों के कार्ड बन रहे हैं, जिसमें वुमेन कार्ड है 5,400 के करीब, पुलिस के हिम कार्ड जो बने हैं वो 625 के करीब हैं, हैंडीकैप के 1,213 हैं, स्टूडेंट के जो आई कार्ड बने हैं ये 2935 हैं।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर।
3: ये 3,000
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: ए, अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ,
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: FM 103.4 में हर्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ। श्रोताओं, कार्यक्रम सुरमई सांझ में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गाइड से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत है HT बर्मन का और गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

0: FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां।
1: कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां सुनने वाले सारे श्रोतियों का स्वागत है। अज हे टाले पर मिंजो सौगी हैं लंबरदार जी।
2: लंबर भाई तुहानू भी सनो ताई जी, मेरी तरफ से राम राम कर मेरे सारे किसान बागवान भाई भैन जो लंबरदार की तरफ से राम राम
1: जी। तो दिखा हाँ दी दूनी दी राम सलाम तो ये मंजूर
2: जी
1: कने होना हाँ बढ़िया छैल बांका बिना गाय खसकाई लिया ना
2: बिल्कुल
1: निश्चय ने बहना पौना एक जो कि बड़ी देर चलता हाँ कार्यक्रम
2: जी जी
1: जानकारियां मती होनी तो सह फिर चौड़ू गाय खसकाई लिया तो
2: हाँ ठीक ला कर दे तो हाँ भाई जानकारियां कने लोग ही तो हाँ अपने किसान साथियों तक पहुंचाने हैं
1: जी।
2: तो सब तो पहले तो जानकारी की गल करिए तो आज तुसा कुंडे जानकारी दिया कर दे
1: जानकारी तो दिखा है तो प्राणी
2: जी
1: पर समय समय पर ता हाँ अपने श्रोतों तक पहुंचाते रहते भाई कई रही होंगी तह जानकारी
2: बिल्कुल तिहा योजना के लाभ लेने ते रही
1: हाँ
2: होंगे
1: तिहा गला भी होंगे कि ये जिम्मेदारी दी होंगी भाई कोई नहीं रहना चाहिए।
2: ठीक लाया कने अज की जड़ी विषय है हाँ ये बोल गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दे
1: जी
2: क्या
1: तरीका
2: फायदे हैं कने किए लेना चाहिए ये बारे से अज हाँ जो सनो ताई और दसा कर
1: जी
2: दें
1: बिल्कुल कने हाँ रली मिली करी अपने श्रोते अपने किसानों ने इस योजना के बारे च गल करनी है
2: जी जी
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अहां दियां भैणां मैं तो बोला दी ना सुनी करी समझी होनी है कजो किसा हिस्सा का पूरा पूरा लाभ
2: ले करदियां
1: लै दियां कने जिहड़ियां बेचारियां हाली तक नहीं लिया ना आया फिर ना आवेदन करना है तो सभी मैं बोलती करी सकदियां कजो की बड़ी अच्छी योजना है सरकार भी यह चाहती पे हुण सह

0: यहाँ तो क्या होया कि समय की बचत तो हुई करना जड़ा पहले भी हंग लाए भी धुएं तो जान छुट्टी
1: जी
0: तो अहां की जी योजना है इस एक दूआ जड़ा दूजा चरण भी चली पिया है
1: जी
0: इस दे तहत भी अहां दियां भैणां सखियां आवेदन करी सकदियां कने सहायता योजना का लाभ ले सकदियां इस ते तुहां लंबरदारी सोचा भी अहां दी रसोई की तस्वीर बदलोई हो
1: बदलोई है जी, ठीक ला कर दे
0: हुण तुहां ग्राएं विच भी कच्चियां बोहड़ीवान रसोई भी जांगे ना
1: जी।
0: तो बाकी तो चलो कच्चा होगा ओबरीवान पर जल जहां रसोई च बढ़ देना तो तू बड़े छैल हानी भैणां बनाई चढ़ाई गैस रखी होंगी
1: बिल्कुल गैस रखी होंगी कने एक और सानू ताई मैं भी दसना चाहूंगा भी ऐसी भी नहीं गल भी चूल्हे खत्म ही करी
0: ना
1: थे।
0: ना चूल्हे
1: साढ़े जड़े नौइयां तकनीकां कन्नै चूल्हे बना करदे कोई धुआं नहीं अंदर कोई ए नहीं है ना जी हर
0: हाँ
1: तरीके
0: जी
1: कन्नै
0: जी
1: चिमनियां बनाई के साढ़े किसान साथियों घरें खूब चूल्ही भी रौनक लगा करदी है ना
0: पहला
1: जी
0: तो चलो ये था गरीबियां भी होंदियां थियां
1: जी।
0: कने उतने मिस्त्री मजदूर भी साबी किताबी मिलते
1: हाँ
0: हैं ना
1: बिल्कुल ये गल गला
0: तो
1: तो
0: सादी दे ही जी बर्तने लायक चूल बनाई दें हे
1: जी जी
0: पर हूँ देखा बड़िया बड़िया तकनीक आई हैं ना हूँ मिस्त्री मजदूर भी पढ़े लिखे न
1: जी
0: सह हूँ अनपढ़ मिस्त्री मजदूर नहीं है जलू लोग लखा हजारा का मकान बना देना तो सह मिस्त्री मजदूर तेने आपू सलाह दे दे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पे
1: ठीक
0: सा
1: है
0: कूणा चूल बड़ी छैल होनी ये भट्ठी इं निकलनी
1: जी।
0: ये धुएं चिमनी इं बननी
1: हाँ
0: पर यह जी योजना यहाँ का लाभ भी हाँ नहीं गुआना
1: बिल्कुल नहीं गुआना है ना
0: मैंने
1: जी।
0: हाँ दी
1: कने दिखा भी ऊनी सनू ताई जड़े ब्याह होए ना नोए नोए
0: हाँ जी
1: तेने भी इं हूँ तुहाड़ी योजना है तो तेने बेचारे नहीं पता
0: नहीं
1: तो हूँ
0: पता
1: नवा घर बसना तो नौ चूल्हे भी चाहिए है चूल्हे भी चाहिए है
0: जे
1: ना
0: चाहिए कने गां समय दी मांग है कने चलो प्यार बनी रहा परिवारां दा पर जलू योजना लाभ दे दी तो मैं
1: बिल्कुल
0: बोलती सारी भैने बड़ी चढ़ी के इस विच भाग लेना
1: लेना चाहिए
0: चाहिदा
1: बिल्कुल
0: कने लंबरदार जी तुहें तो मां ते ज्यादा पता हुंदा वे इस वक्त 10-10.5 करोड़ ते ज्यादा महिला इस योजना दा लाभ ले बैठी
1: और
0: ने
1: जी जी बिल्कुल
0: कने जड़ा 2025-26 साली चलो लग्या है
1: जी।
0: इन्हां इस साले विच कम से कम 25 लाख जड़े और कनैक्शन
1: ओह
0: देने दी
1: देखो
0: जड़ी एक मतलब मंजूरी दी हो
1: मंजूरी
0: सरकार
1: जी जी
0: कने इस योजना विच लाभ आदि भैणा तां ले सकदियां इस वास्ते कुछ पात्रता है कुछ दस्तावेज लगदे न
1: बिल्कुल
0: तो सीधी गल पे ये जड़ा कनैक्शन है सीधे आदियां भैणा दे नाएं पर ही मिलना
1: मिलता है जी
0: पे एक भाई गलान जे भी मैं अपने नाएं पर लिया तो तियां नहीं होना कने दूआ जड़ा गरीबी रेखा दे नीचे वाले परिवार है ना
1: अच्छा जी
0: तिन्हें सब तो पहले मिलना है लाभ
1: बिल्कुल
0: कने एक ये इस विच शर्त रखिए भी जिन्नी कनैक्शन लैना तीस दूआ कनैक्शन ना हो तो नाएं पर
1: बिल्कुल मतलब दूसरा कनेक्शन नहीं ले सकते तो हाँ एक कनेक्शन जरा ऐसा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देता है तो ले
0: ले
1: सकते
0: सकते कने दस्तावेजा की गल करिए तो दिखा दस्तावेज सही है जड़े आम हाँ दियाँ हर योजना विच लगते तो इस विच आधार कार्ड हुई है राशन कार्ड हुई है बैंक की कापी हुई कने फोटो दो तीन ता आपू वल रखी लैने
1: जी बिल्कुल
0: तो दिखा बड़ी अच्छी योजना है कने हाँ घर घर दिखा दे भाई मेरे ख्याल हूँ कोई लब्बा फब्बा कर रही होगा जिथू ये योजना ना पुजी हो बाकी लगभग सब भैन हाँ दियाँ इस योजना
1: इस
0: ने जुड़
1: योजना का
0: चुकी
1: लाभ लिया कर दिया ना कने
0: जी
1: आशा करनी भी जड़े पढ़े लिखे युवा है ना सह अगर कुछ इस योजना लाभ नहीं मिले तो तिन्हें भी जरूर
0: दसन
1: जानकारी देन
0: जी
1: कि
0: जी
1: वे इं तुम यह योजना लाभ ले सकते कने आसान पैसे ने जड़ी से तुम जो ये योजना लाभ मिली सकता
0: कने
1: है ना
0: इच
1: जी
0: खास गल है भी जलू बोले कनेक्शन मिली आना नवा ना
1: जी
0: तो पहला सिलेंडर है तो बोले जी भी बड़ी बती च अनुदान मिलता
1: जी
0: कने साले विच 9 सिलेंडर हानी भैणा ले सकदियां कने ऐसा अपना माड़ा मोटा जे वधिया छैल बांका चूल्हा बनाया ना तो इस भी वरतदियां रहन पर
1: बिल्कुल
0: धुएं वाला कम घटाई देन
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कहे कि धुएं ते बचने वास्ते ये योजना चली हो है जे तू हाँ ऐसा योजना का लाभ ले करी भी धुएं ने जूझ गई
1: जी जी
0: ता तो फिर मजा नहीं आना ना
1: बिल्कुल तो ठीक लाया कि भाई यह योजना ते बाद हूँ हाँ आशा करते भी हरे किसान भैन समझी ही होनी
0: जी
1: हूँ चला जरा अगले चरण की तरफ
0: अगला चरण यही है पे यहाँ पहले सुनाना टियाले पर थू लोक गीत ना
1: जी
0: फिर गांव की गलबात सोच दे विचार दे भी
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल
0: करनी है
1: बिल्कुल।

0: जी तो लंबरदार जी बोलिया भाई बागसू की धार कने बड़ी बांकी लगती।
1: भाई देखा भाई फराटिया लाने दिल कीता था, फराटी भी लाई ली है, कने एदे प्यारे दे लोग गीत जी झनकार जड़ी सा कुथू मिलनी सा।
0: इस वक्त दिखा जल हुए बरखा हो याद ही ना
1: जी,
0: कने एकदम मौसम साफ हो जाता, जड़ी ये धार है ना हाँ सामने
1: बिल्कुल ते हुई याद।
0: हाँ ये लगता भी तो पूंजी रखी हो, कने बड़ी छैल स्पष्ट दुस दी।
1: भाई इस मैं तो एक बार दिखा भी सनो तो ये बोलना चाहूंगा भी लोग लखा करोड़ा रुपये खर्ची के इतू इन्हें धारा ही दिखना
0: दिखना हुआ दे जी
1: कना हाँ हाई गोदा च खेला कर दे।
0: हाँ,
1: इस ते बदी के मौज
0: रही।
1: क्या हो सकती
0: जी हाँ मैं हाँ तो बड़ी बाकी जगह बिच रेंदे बसते हैं, पर सही गल है भाई ये चीजा ही रहन छाल बाकियां दुनिया भी दिखे कने अहां भी ब्याह उठी इन्हें दर्शन करन।
1: ठीक लाया तो हाँ भी थोड़ा जरा बिचे गल छुपी हो सह है भी संभालना भी साड़ी
0: संभाल करना बड़ी जरूरी है
1: जी।
0: सह खास करी संभाल जी अहां माणुआ दे करनी सा तो चलो अहां दा फर्ज है ही, पर सौगी जड़े हाँ प्रकृति की संभाल कर सकते, पेड़ पौधे लगाई
1: बिल्कुल
0: सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ये जरा टाइम लग गया बरसाती दा
0: बड़ा
1: ये
0: बांका
1: बड़ा फरी मैं बोलता पे 100 पैसे दी गल हाँ करिए ता ये दिन जड़े न कोई भी रुख बूटा कलम तो हाँ इन्हें दिनों च लगा यहाँ प्रकृति दा सेवा ही होनी है
0: सेवा होनी, कने सह चीजा की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत भी नहीं पौंदी।
1: जी।
0: कई बरसात मौसम ही ऐसा होंगे जी तो हाँ कोई फलदार बूटा लाई देंगे, कोई कमे की लकड़िया का रुख बूटा लगा
1: जी
0: देंगे
1: जी
0: ना,
1: जी
0: तिन्नी भी आस्ता आस्ता भी थोड़ा डंगर बशुआ तो हाँ यो ध्यान रखना पौना,
1: बिल्कुल
0: बाकी तिन्नी बढ़वारती दिया भोनी छैल बाकी बरखा दी चल ठंड ठंडी फुहार पौंदी ना
1: जी
0: ऐसे बूटे आपू ही बदते।
1: बिल्कुल तो ठीक लाया कहना अजकल तो हाँ दिखा पे हाँ बोला है ना भाई मौजा ग्राएं दिया कार्यक्रम चलिया है
0: हाँ
1: तो मौजा ग्राएं दिया अज तो हाँ सनो ताई तो हाँ दिखन पे तरह तरह के अंबाइया क्वालिटियां है
0: बड़े बड़ी छाड़ां
1: भाई
0: जी।

0: कोई चौसा, कोई लंगड़ा, साढ़े देसी अंब है ना जी,
1: हाँ
0: कोई
1: ग्रां बिच
0: मुस्की
1: जी
0: है,
1: जी
0: तां तरह तरह के साढ़े बच्चे भी मौज करा करते। कन्नै एक और गल भी, जड़ा अजकल मतलब साढ़े ग्रां च जड़ियां किस्मां मिलदियां ना अंबाइयां,
1: हाँ
0: सह बाहर
1: जी
0: नहीं मिली
1: नहीं
0: सकदियां,
1: मिलदियां तेना स्वाद ही अलग
0: तिन्हां
1: है
0: दा स्वाद ही अलग है।
1: जी।
0: भौं तुसां टोकरू भरी खाई आ दिने च, रोटियां भौं मत खा,
1: तो हाँ
0: है।
1: गल छेड़ी पाई जालू हाँ निक निके होंदे है ना तां पुराने घरां दूर होंदे हे तां ते त्योहां दियां माओं क्या करदियां थियां पे दो तीन सूट अहें ऐसे मैले पाई देने ना पे जालू भी अंब चुपने होंगे तो तुहां सूट बदली लैना पर तुहां मनना नहीं पे सै सूट ऐसा हो जाता पे सारे समोसा बन जाता था
0: ठीक लाया, ठीक
1: कनासा
0: लाया।
1: भी पूरे आज्ञाकारी होंदे हे भी खरा सूट नहीं खराब करना जालू अहां दे दादू दादियां अहें अंब चूपने छैल धोई बनाई देने ना
0: जी
1: तां सै सूट झटपट बदले होना ना अंब चूपने छैल बांके खाने
0: बिल्कुल
1: कने
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: फिर
0: इस सैली मौज ना सन्नो ताई, मैं बोलता कोई नहीं ले
1: नहीं
0: सकता।
1: ले सकता
0: कने इसा धार या गोदा च बेही के, कने ये दे अंब अंब आजकल तो हाँ दिखा पे जमणू भी तैयार हो गए
1: जमनू तैयार होई हो
0: बई। कने साड़ियां बच्चे जड़ी छुट्टियां भी बरसाती दियां पई गईयां।
1: हाँ सारे चोलू बनाई लियो ना
0: हाँ
1: कने नानू नानी ये करे तैयारियां शुरू हुई हैं
0: बिल्कुल, तो ठीक लाया। तो इन्हां बच्चियां दा एक होर बरसाती दिनां च संभाल रखने की जरूरत है।
1: जी
0: नानू नानियों का प्यार तो बड़ा बधिया, लेकिन जालू असा कन्नै इन्हां कन्नै कोई डंगरिया चारना जा कर दे या
1: हाँ
0: कुछ
1: खेला
0: गांव
1: खेला
0: पचां
1: चली
0: जा कर
1: आंदे
0: दे
1: जी
0: खेला
1: जी
0: खेला, तो अजकल नदी नाले जड़े इन सै मिंटा स्किंटा च बधे हुआ करते हैं।
1: बधिया दे जी
0: तो सानजो इन्हां दिनां च अपने बाल बच्चों का, डंगर बछुआ का भी ध्यान रखना पौना कि ऐसे मौके पर सानजो बड़े आपू सजग हो के गांव बध के तिन्हां का बचाव जड़ा सा
1: बचाव
0: करना
1: करना
0: है।
1: कने हाँ हिमाचल विच रहिंदे ना इत्थू दू घड़ियां मौसम पता नहीं हुंदा कदे होई जाना
0: बिल्कुल
1: तो उपर दिखा पहाड़ा पर बरखा पई रहिंदी
0: हाँ
1: कने बच्चे थल्लै खड्डा नालूआं च नहाउणा पई रहिंदे
0: बिल्कुल, थोड़ा जड़ा पधरा इलाका है तिस विच पता नहीं लगता भी धारा पर बरखा हुई है,
1: पियो जी
0: कुछ खोले च बरखा हुई ही है, तो पता नहीं हुंदा कलू मतलब खड्डा गज्जा आई जानियां ने, है
1: जी
0: ना।
1: तो दिखा बड़ी समझदारी वाली गल करना चाहिए इस वक्त जड़ियाँ माओ बेचारियां कन्ने जांदियां बच्चे ने तो चलो कर माड़ी मोटी रोक टोक कर लैंदियां कई बार बच्चे पहले चली जाते हाँ 2-4 दिन पहले चली जाते तो नानू नानियाँ लाड हों ना
0: आहा
1: तो सह चलो बच्चे गलाना भी जाना नहाना तो सह भी नहीं टिकी सकते फिर तो थोड़ा दिया मैं
0: बिल्कुल
1: बोलती
0: बिल्कुल।
1: डराई दिया
0: तो
1: पोवें
0: हाँ
1: पर दे दिए जगह मत लिया कहना हूं सह तू हाले वक्त नहीं रियो
0: बिल्कुल, तो ठीक लाया। कने अजकल जीजू कंडू भी जड़े हैं सह इन्हें दिनों च बाहर आई जाते हैं, तो तिदा भी जरूर ध्यान रखना
1: हर
0: है।
1: चीज़ा
0: कने
1: बरसाती
0: बरसाती गलबात हाँ गांव भी जारी रखी सनो ताई, लेकिन इस वेले समय होया एक प्यारे दे लोक गीत का,
1: जी
0: तो हाँ सुना जरा एक प्यारे दे लोक गीत।

0: बधी पिया है ना जी,
1: जी
0: पे अपने डंगर बछुए है जरा सा हरा घा लियो ना। तिस ताई भी अहां अपने किसान साथी बोलना चाहेंगे कि भाई पशु जरा सा जलू निबले निबले का टाइम में जरा ऐसा घा बढ़िया वह तो खरा रहा है ना
1: बिल्कुल
0: जी। सलाबा जरा ऐसा मतलब बरखा वाला पाले वाला घा जरा सा पशु साढ़े खराब भी करी सकता
1: बिल्कुल
0: लगी
1: जी
0: सकता। तो हाँ जो चाहिए कि भाई सुक्का सुक्का या अगर भ्यागा बढ़िया तो सह संझा पाइए ताकि पानी जरा सा नित दिया दिता है ना
1: बिल्कुल। कर देखा लंबरदार जी, बरसात मौसम ऐसा भी इस पर जितनी गल की जाए उतनी
0: जी।
1: घट है, कजो कि ज़्यादातर सावधानी है संबंधित ही गल होंगी।
0: जी
1: देखा हूँ अजकल माखी मच्छर ज़्यादा हो जाता, जे अखे बखे घरें कोई डिब्बर लगी उन्हें कोई सोदया कबाड़ पे इस बीच पानी कठोया
0: जी
1: तमी से फिर हाँ जो नुकसान करता।
0: बिल्कुल पानी निकासी है हर फसल च भी जी। तो छली फसल दिखा सोयाबीन बाई हो तो तिसी दिखा तो तिचे तो जितनी पानी निकासी रहेंगी उतनी थोड़ी फसल जी सब बढ़िया रहनी है।
1: कन्ने बरसाती और भी बड़ी गल्ला जी, बीमारियों की गल करिए तो दिखा अजकल जी मलेरिया हुई है, पेटे दी बीमारियां, छोटी छोटी चीज़ें ऐसा ने बई अहें पता नहीं चलता, कहीं हाँ सोचते हाँ बड़े बड़ी
0: तंदुरुस्त
1: मतलब
0: हैं।
1: तंदुरुस्त हैं, पर हाँ जल छोटी छोटी गल्ला दी लापरवाही करी आते ना तो बाद च बड़ी बीमारियां बनी आंदियां। कने इस गल्ला तो हाँ कोशिश करा बरसाती आपू भी पिया परिवार भी पिया पानी उबाली के पिया।
0: जी बिल्कुल ठीक लाया। तो इसी कन्नै दिखा भी मौजां ग्राइंदियां कार्यक्रम इत्थे खत्म होआ करदा है।
1: जी
0: तो संपन्न करने ते पहले अहां तुहानू दस्सीए भी इस कार्यक्रम च सानू तकनीकी सहयोग दित्ता बिपिन शर्मा ने
1: कन्ने प्रस्तुत करता रहे जितेंद्र पाल सिंह जी,
0: जी।
1: उन्हा हा दुनियो दिया अनुमति।
0: अच्छा
1: अच्छा
0: जी
1: जी,
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार 7:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम

0: कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। A Delhi court today convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others for the killing of intelligence bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh was hearing the case against a total of 11 accused, including Hussain, and convicted 5 of them. The court found Tahir Hussain guilty under the charges of promoting enmity, rioting, assault, criminal force and murder. The case pertains to an FIR registered at Dayalpur Police Station on the complaint of Ravinder Kumar, father of Ankit Sharma. In his complaint, Ravinder Kumar alleged that his son was murdered by the then AAP councillor Hussain and others. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The ministry said the total imports, merchandise and services combined for June this year is estimated at $88.76 billion, registering a positive growth of over 26% as compared to the same month last year. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway this afternoon. The 63-kilometre, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway, with India's second longest elevated corridor, is also the country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. The expressway is designed for speeds of up to 120 kilometers per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 45 minutes. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New

0: Delhi last month in this regard. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. In Tamil Nadu, six people were killed in a bus accident at Melur near Madurai today. The incident occurred at Kottambatti Road, where two buses collided head-on. Seven passengers who suffered severe injuries and 15 passengers who sustained minor injuries were admitted to the hospital. The police have ordered an inquiry into the incident. In a tragic incident in Maharashtra's Pune district, three women pilgrims of the revered Ashadi Wari were killed and seven others were injured after a truck ran through a group of pilgrims walking on Saswad Jejuri Road this morning. According to preliminary information, the driver of the truck carrying workaries from Nanded district lost control of the vehicle near Bhelsar Toll Plaza and ran over multiple workaries who were undertaking the pilgrimage by foot from Sangli. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsized incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India by Vietnam Airlines flight this evening. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. The United States and Iran have each claimed control of the Strait of Hormuz following a weekend of escalating attacks across West Asia. The United States has said it carried out overnight strikes on several Iranian military targets, including air defense systems, coastal radar sites, missile and drone facilities, and small naval vessels. In women's cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in a one-off test against host England at the Lords. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lords, chasing a target of 457 runs. The hosts were all out for 186 in the second innings before lunch on day four. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: जी ता खेती बाड़ी कार्यक्रम लेकर यहाँ फिर हाजिर होइए ना।
3: बिल्कुल लंबरदार कने सन्नो तुम्हारे साथ कने आइए ना
2: जी। ता
3: भी सन्नो जी हूँ दसा भी अज हाँ खेती बाड़ी कार्यक्रम च अपने किसान साथियों कने क्या दे बारे च गलबात करी।
2: गलबात करनी पहले तिना दा दिखा सकसांत पत्रा तहां पिछले कार्यक्रम च पूछी लिया कने उम्मीद करनी है जेड़े हुन जेड़े इस कार्यक्रम च सुने जोंगे सभी राजी बाजी होने ना।
3: बिल्कुल
2: ता दिखा अज जेड़ा कार्यक्रम विच विषय ऐसा है जल संरक्षण कने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
3: जी बिल्कुल
2: ता दिखा फिर बरसाती वाली गल जुड़ी है
3: मतलब जुड़दी जा कर दी।
2: हाँ।
3: कने ए जड़ा तुहां गलाया ना बे जल संरक्षण जड़ा है से बड़ा जरूरी विषय जड़ा से बनदा जा करदा।
2: कने दिखा हां दी सरकारां भी मिली करी पानी कियां ना कियां भी बचाना है इस तियां भरसक प्रयास करा दियां। कने उम्मीद करनी है भाई आने वाले दिनों च अहां दे किसानों खेती बाड़ी विच पानी संबंधित कोई तिने कमी नहीं रहनी।
3: भाई दिखा सन्नो जी भाई साढ़े तो सीढ़ी नुमा खेत होंगे तो सीढ़ी नुमा खेता च क्या है भाई अगर अहां उपलिया पट्टी च पहले भी सरकार अनुदान पर योजना चलांदी थी कि अगर अहां छोटा जिहा एक डैम बना दिता जाए कने अपनी सब्जियां वगैरह तिस डैमे दे पानी कने अहां मतलब उत्पादित करी सकदे
2: कने तिस डैमे विच तुहां उइयां पानी उपलब्ध नहीं हुंदा तां तुहां बरखा दा पानी
3: पेठी पूठी का पानी आंदा तिस डैमे च आइए
2: कट्ठा
3: इस कने एक मैं और गल तुहानू गलाना चाहूंगा सन्नो जी बई पहले गलांदे थे बई पहाड़े की जवानी कने पहाड़े का
2: पानी
3: सब बेकार चली जाते लेकिन हूँ सा टाइम नहीं रे हूँ साढ़ा पहाड़े पहाड़े का पानी भी रुका करता कई जगह तुहां दिखा पे बिजली बनाने दे अहां जगह जगह संयंत्र लगाई ते कने कई पानी दियां परियोजना जड़ियां से अहां चलाईयां पे अगर पानी पीने तक है तो सभी घर घर पुज्जा करता कने दूई गल रही गल जवानियां दी तो पहले क्या होंदा था हाड़े तो ना काम होंदे थे ना कार होंदे थे तो सब नौजवान नौकरी करने ताईं जिहड़ा सब बाहर जाना
2: पौंदा
3: अज तुहां दिखा पे बद्दी बरोटी वाला सोलन ये सारे इलाके कांगड़े दे कई इलाके जिहड़े ने बड़बड़ियां उद्योग लगी है उत्थों।

0: में दिखा हाँ जड़े युवा पढ़ा दे लिखा दे सै कृषि संबंधित पढ़ाइया भी करा दे
1: बिल्कुल
0: दसा भी खेती बाड़ी भी चुन थोड़ा रुझान दसा
1: दे दसा करते नवा दिमाग जलू लगा करता तो नवे तरीके की खेती हुआ करती कने नवा हाँ बोल गए भी उन्नति आर्थिक उन्नति भी हुआ करती
0: बिल्कुल तो दिखा जल संरक्षण हाँ जिया भी हुआ हाँ करना है
1: बिल्कुल
0: कने जल संरक्षण के उद्देश्य भी यही है भी बरखा के पानी तो बचाना ही बचाना जड़ा हाँ भूमि जल है तीदे स्तर जो भी सुधारना कने पानी की बर्बादी जो रोकना
1: जी तो जी तो भूमि जल के बारे बोल रहे ना तो भूमि जल स्तर अगर हाँ बधाना है तो जियाँ नदी नाले चाहे चेक डैम बनाए जाने तो सरकार कई योजना भी चला करती है रोकी रोकी के पानी अगर हाँ नीचे उतारन क्या नो अबे बरखा होया छल छल करता है एकदम उतरी है अगर पानी रोकी रोकी के अगर हाँ उतार देन चेक डैम बनाए के उतार देन तो तिस पानी जरा ऐसा जरूर भूमि जल के रूप से परिवर्तित होना कने साडे किसान भाइयों कुछ ना कुछ रूप में सो फायदा मिलना
0: कहने दिखा हाँ पानी बड़े तरीक़े ने संरक्षित कर सकते जी तो पहले हाँ खूह बोड़ियाँ पहले संरक्षित करा
1: जी
0: जी
1: जी
0: तू ते पहल करा कने तलाह हुई है नदियाँ हुई हैं अगर जे से ठीक है ना ये तीन दे अखे बखे से चिक मिट्टी नी रही डंगे जे ते मैं बोल दी पक्का ही करा
1: जी
0: ताकि से पानी तू ज़्यादा समय तक रुकी
1: रुकी
0: सके
1: सके जी पहले भी दिखा भी हर ग्राएं चे एक सनो जी हाँ बोलिए तलाव होंगे
0: तलाह
1: थे
0: होंगे थे
1: पूरे ग्राएं दा पानी तां तुआं दा इस तलाज इकट्ठा होंदा हा चाहे सा पशुओं पियाने ताई या कपड़े धोने ताई हाँ इस्तेमाल कर देते
0: कुछ भी रूप च जी
1: जी तो हूँ भी अगर हाँ तीस सह तलाए का एक ही महत्व नहीं होंगे था सह तो पानी इस्तेमाल तो होंगे ही था कने कने सह भूमि जल भी
0: धरती च भी
1: धरती
0: समाद
1: से
0: है
1: भी समा
0: जी
1: करता होंगे
0: जी
1: था
0: जी जी
1: कने तिसने हाड़े भूमि जल दे भी फायदा होंगे था
0: कने हुण ज्यादातर हर तरफ जड़ा कंक्रीट बिछी है ना
1: जी
0: इस ते भी थोड़ा हाँ भूमि जल जड़ा है
1: मैं
0: थोड़ा सा कमी हो दी है
1: कमी आवा कर दी कने हूँ तो हाँ दिखा पे हाड़े कोई चले कोई कुल्ला जड़ियाँ ने सब पक्या कर
0: पक्या
1: दी ना
0: हुई
1: तिस
0: हैं
1: की वजह कने भी भूमि जल च कमी आवा कर दी
0: तो
1: तो
0: घरे बिच अगर हाँ घरे की गल करिए
1: जी
0: चलो बड़े स्तर पर नहीं तो हाँ घरे बिच भी कोई अगवाड़ा बिछवाड़ा कोई जहाँ अंगण बरामदा है ना तो थोड़ा बहुत मैं बोलती कच्चा होना चाहिए
1: जी
0: ताकि सह जमीना बिच पानी रचदा रहे तो सही पानी हाँ यो कुछ ना कुछ रूप बिच कमे
1: बिल्कुल
0: आउंदा
1: कने दिखा
0: रहिंदा
1: भी तां जेहड़े अजकल हाँ धान लगा कर देना सनो जी
0: हाँ
1: इदा
0: जी
1: भी एक फायदा है भाई इस भी पानी जलू पट्टी च रुकता तो कुछ ना कुछ रूप च धरती च
0: ज्यादा
1: जाता
0: ही
1: है
0: ज्यादा जी
1: तो प्रकृति अपने आप पे ही चलाती रहती थी कने चलती थी कने हाँ कोशिश करनी पे अपनी पृथ्वी हरा भरा करके कने पूरी रौनक जड़ी खेती बाड़ी चलानी तो हूँ जरा समय है मैं तो दो हाथ जोड़ी गलांगा पे रौनका का है
0: बिल्कुल रौनक भी लगाई देनी है जो कि हाँ ट्याले पर जालू बहन देता हाँ सारा ही साजो समान रखे होंगे
1: जी
0: भाई कमे की गलबात भी करनी कने सौगी सौगी अपने
1: हाँ
0: श्रोतियां का मनोरंजन भी
1: करना
0: करना है तो दिखा बरसात लगी हुआ है कने हुण नागणिया दे मेले कोई
1: हाँ
0: नाग मंदिर जा दे
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मतलब
0: भेंट
1: जड़े
0: सुनानी है
1: शिव दवालू जड़े सब जागी पे न तो
0: जी
1: आवाज सुन दे प्यारा दिया लोक भजन।

0: जी किसान साथियों तुहां तक भेंट पुजी है कि ना, उम्मीद करनी है भाई तुहां भेंट बोले सुनी केरी आनंद जरूर ले आना है।
1: बिल्कुल तुहां ठीक लाया भी। अजकल जियां मेले की गल की ना तुहां, तां जरूर
0: जी
1: इस जड़ा सा एक सहयोग जड़ा सा साढ़े तरफ ते मिला होना।
0: जी कने हुण फिर ते हां थोड़ी दी जानकारी ते जिहड़ी पहले भी गल करा दे, जल संरक्षण दी तां होई ही पर सौगी सौगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस बारे भी हां तुहां ने गल सांझी करनी है।
1: जी
0: तदी का गल दोनों ही पाणीआं ने जुड़ियां ने। बे कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार 2015 च शुरू की थी, कने इस योजना का मुख्य मकसद यही था भी हर खेत तक पानी पहुँचाना।
1: पजाने दी जी
0: कने दिखा कुछ इलाके ऐसे ने बोले पूरी तरह बरखा पर निर्भर है,
1: जी
0: जिथू पानी पुजदा ही नहीं, कने कई ऐसे हैं जिथू समय समय पर पानी पुजी आंदा,
1: जी
0: पर
1: जी
0: सह समय रहिंदे हर साग सब्जी
1: फसल
0: फसल
1: लगन
0: लगाई लैंदे,
1: जी
0: पर कई बेचारे ऐसे ने सह बरखा पर ही न्याला अंबरे बखे नज़र तिना लाई हुंदी हाले
1: बिल्कुल।
0: भी।
1: तो भी जी गल करा करते ना, अल्ले भी धार छांब धारा देवा इतों के लोग जड़े से बरखा पर ही धान लगा करते, हूँ जी
0: जी
1: बरखा हुई तिसने धान लगा करते हैं।
0: जी तदिखा बोलिया प्रति बूंद ज्यादा फसल लैनी, तब बूंद सह हिसाब है भाई, एक तो हाँ पानी जलू हों खुला तो हाँ व्यर्थ नहीं गुवाना है। कने अजकल बड़ी बड़ी नोई नोई तकनीकां चलिया ने, जिया दिखा बई तो हाँ टपक विधि होई, स्प्रिंकलर होई, फवारा विधि,
1: जी जी
0: ड्रिप सिंचाई, बड़ी बड़ी ऐसी चीजा जिन्हें ना हाँ थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद
1: बूंद
0: करी
1: बूंद ने
0: करी
1: अपनी फसल पे तैयार करी सकते
0: करी
1: हैं ना
0: सकते। तो इससे क्या होंगे, एक तो पानी का बचाव होंगे, कने बूटे हो कने फसल आयो सही बोलिया पानी मिली आंदा,
1: मिली अंदर जी।
0: कि तो कई बार होंगे बोलिया थोड़ा जरूर तो पानी दे, कने हाँ देखा भी पानी कुल खूब
1: हाँ
0: खूब चली हो तो हाँ सर जी पानी पूरा पटिया तक पजाई था।
1: बिल्कुल
0: तो इसते कुछ फसलों कुछ हाँ दी साग सब्जियां ऐसी होंदियां से सड़न भी लगी पौंदियां
1: जी, जड़ें खराब हो जाए ठीक
0: जड़ा।
1: ला कर दे दो।
0: तो इस वास्ते ये है कि जिहड़ी सिंचाई योजना है सरकार यहाँ तहत कई बारी समय रेंदे रेंदे हयों अनुदान भी दिंदी, तो तुहां इहदा जरूर फायदा लेना है। कने इस योजना जिहड़े ते कोई और भी नोई कोई अजकल बदलाव होया हुआ है तिसने भी तुहां जरूर जुड़े रहना है।
1: बिल्कुल, ये जी तुम गल दसी ना सनू जी, ब्लॉक स्तर पर अगर कृषि अधिकारी ने संपर्क पर
0: जी
1: रहन
0: तू सारी गल पता
1: तो
0: लग
1: हर तरह की गलबात जी से पता लगती रहती। कहना हाड़े किसान साथी जड़े हाँ बोल के उन्नत किसान हैं, जरूर तेना कन्ने मिली जुली के काम करते रहते।
0: कने बोल दे भी ने भी जल है तो कल है, कने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अपनाई करी हां दे किसान सिर्फ पानी ही नहीं बचा सकते बल्कि अपनी फसलों की लागत कट करके ज्यादा मुनाफा भी
1: मुनाफा कमाई
0: कमाई
1: सकते हैं
0: सकते।
1: जी ठीक लाया।
0: तो ये बड़ी कमे दी गल थी। कने आहा हुण इस ते बाद अपने श्रोतियां सुनानी है भई एक जानकारी जिहड़ी हाँ हर कार्यक्रम चलो भी हाँ बहन देता
1: जी
0: सुनांदे,
1: जी
0: तां अज बरसाती विच सब्जियां जिहड़ियां उत्पादन हाँ दे किसान करदे ने

0: जुड़ी हो, एक गलबात है, जानकारी है, सबने श्रोता तक पहुंचानी
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल।
2: बरसात के मौसम में सब्जियों की उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी और इस संबंध में जानकारी देने हेतु जो है तो विशाल डोगरा जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कार्यरत हैं। ये बताइए कि जब भी हमने सब्जियां लगानी होती हैं तो सब्जियां लगाने से पूर्व जो है हमें क्या कुछ जो है सावधानी लेनी चाहिए।
3: जिला कांगड़ा में या हमारे प्रदेश में सब्जियों के लिए हमारे मुख्यतः तीन मौसम हैं। एक मौसम सर्दियों का मौसम, दूसरा मौसम ग्रीष्मकाल की सब्जियों का मौसम और तीसरा मौसम बरसात का मौसम। तो हर मौसम की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, कुछ अपने फायदे हैं। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी चुनौती होती है सिंचाई की। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा चुनौती होती है जो कम तापमान हमारे होते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हमारी बीमारियाँ हैं, और इसके अलावा जो हमारा ये क्षेत्र है इसमें बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो बरसात के पानी की निकासी सब्जियों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, मुख्यतः जो सब्जियाँ हम गर्मी के मौसम में लगाते हैं वही मौसम हम दोबारा से बरसात के मौसम में भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा कई बार हमें किस्मों का चुनाव जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए हम टमाटर की खेती कर रहे हैं, जब हम गर्मियों में इसकी खेती करते हैं तो हम बोनी किस्में लगाते हैं, हम वैज्ञानिक भाषा में उसको डिटर्मिनेट बोलते हैं। उनके फूल इकट्ठे आते हैं, उनके फल इकट्ठे आते हैं और वो इकट्ठी ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब बरसात के मौसम में है तो हम बोनी किस्में नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा बरसात के मौसम में कई बीमारी पैदा करने वाले फंगस हैं, वो मिट्टी से उछलकर पत्तों पर या पौधों पर गिरते हैं और बीमारियां आ जाती हैं। तो इसके लिए हमें चुनाव करना पड़ता है। जैसे टमाटर की बात करूं तो ऊंची बढ़वार वाली या लंबी किस्मों का, बेलदार किस्मों का। इसी तरह फ्रास बीन की भी ऐसी बात है, उसमें भी हम अगर गर्मी में लेंगे तो बोनी किस्में, बरसात में लेंगे तो हम ऐसी किस्में लेंगे जिनको जो बेलदार होंगी, ताकि हमारा बरसात की बौछारों से जो मिट्टी उछलती है उससे कम से कम नुकसान हो। मुख्यतः भिंडी गर्मी में भी लगेगी, बरसात में भी लगेगी। जहां पर सिंचाई की सुविधा है वो किसान तो इसको मई में भी लगा सकते हैं, जून में भी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ किसान हमारे इस क्षेत्र में ऐसे भी हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उन किसानों को तो बरसात पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो जैसे ही बरसात की पहली बुछार होती है, जिसे हम प्री मानसून रेन्स कहते हैं।
2: तो बता रहे थे कि जो फसलें लगती हैं कौन कौन सी हैं, भिंडी के जिक्र कर चल रहा था।
3: भिंडी एक बड़ी हमारी प्रमुख फसल है गर्मियों की भी और बरसात में भी, और ऐसे क्षेत्रों में भी जहां सिंचाई की सुविधा नहीं होती है। इसके अलावा जो बेलदार फसलें हैं जिसमें खीरा, घिया, तोरी, करेला, पंडोल, कद्दू पर जाती है, सारी सब्जियां हम बरसात के मौसम में ले सकते हैं। इसके अलावा बैंगन है, मिर्च, और इसके अलावा जो मसालेदार फसलें जिन्हें हम कहेंगे, जैसे अदरक है, हल्दी है, अरवी है, या घंडियाली जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, उनकी खेती भी इस मौसम में हम कर सकते हैं।
2: तो इस मौसम में कंद जो है जमीन में दबे रहते हैं उसमें तो पानी की निकासी जो है सुनिश्चित आवश्यक होती होगी।
3: हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ इन कंद वाली फसलों में, दूसरी जो फसलें हैं उनमें भी पानी की निकासी बहुत महत्वपूर्ण है,
2: खासकर भिंडी में।
3: हाँ भिंडी में या टमाटर में, क्योंकि जैसे ही अगर इनकी जड़ों में पानी खड़ा हो जाएगा तो इनको पौधे भी, क्योंकि आप जानते हैं सांस लेते हैं, तो इनको सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी हमारी मिट्टी में हो जाएगी और ये सांस लेने में इनको समस्या हो सकती है। तो एकदम से हमें अगर पानी खड़ा हो जाता है तो पोषक तत्व लेने में भी समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए हम सिफारिश करते हैं किसान भाइयों कि आप बरसात के मौसम में जब सब्जियां लगाएं तो क्यारी जो है वो जमीन से थोड़ी सी आधा फुट ऊंची उठी हुई होना चाहिए, और उसके हर 1.5-2 मीटर के बाद एक गहरी नाली जैसी आप चैनल जैसी निकालें, ताकि जो एक्सेस या ज्यादा पानी है वो उससे होता हुआ बाहर निकल जाए। तो क्यारी बनाना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उसमें पानी नहीं खड़े होना चाहिए।
2: भिंडी की बात करते हैं तो भिंडी की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं या संकर किस्में हैं जिनकी बिजाई कर सकते हैं?
3: हाँ, जैसे आपने कहा कि भिंडी की दो प्रकार की किस्में होती हैं, एक को हम सादी किस्में बोलते हैं और एक को संकर किस्में बोलते हैं। सादी किस्में जो हैं वो जो हमारे सरकारी तंत्र के विश्वविद्यालय हैं या ICR के इंस्टीट्यूट है वहाँ से निकाली गई हैं। उसमें सबसे अच्छी जो हमारे इस एरिया के लिए पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की है, उसका नाम है पालम कोमल। इसके अलावा P8 एक अन्य किस्म है, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, अर्का अनामिका, अर्का अभय, ये कुछ सादी किस्में हैं। इनका सादी किस्म से मेरा मतलब ये होता है कि इनका बीज आप खुद बना सकते हैं,
2: यानी कि ये उन्नत किस्में हैं लेकिन संकर किस्में नहीं,
3: संकर किस्में नहीं है, और इनका बीज आप चाहें तो अगले साल के लिए रख सकते हैं। लेकिन संकर किस्में जो होती हैं उनका बीज आपको हर वर्ष नया लेना पड़ता है, और ये मुख्यतः निजी कंपनियों की किस्में होती हैं। तो इसमें इंद्रनील, तुलसी, क्रांति, पूर्वी, ऐसी कुछ अच्छी किस्में प्राइवेट निजी कंपनियों की हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं
2: जी। तो इसके अलावा जो कद्दू प्रजाति है फसलें,
3: कद्दू प्रजाति सब्जियों में भी दोनों प्रकार के बीज होते हैं। जो किसान भाई देसी के नाम से आजकल या ऑर्गेनिक या नेचुरल खेती कर रहे हैं, उनको तो हम सलाह या हमारी यही रहती है कि आप जो देसी या हमारी वो देसी किस्में हैं उन्हीं के बीज उसमें लगाएं, तो उनका स्वाद जो है वो संकर

0: किस्मों से बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ किसान भाई जो कमर्शियल खेती करते हैं तो खीरे में, मतलब अगर संकर किस्मों की बात की जाए, हमारे पास मालव या मालिनी, काजल नाम से ऐसी अच्छी संकर किस्में हैं जिनको आप बाजार से लेकर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं घिया की बात करें तो आर्या, MGH1 नाम से किस्में हैं निजी कंपनियों की, उनको लगा सकते हैं। अगर लौकी की बात करें तो MGH8, MGH4 और अनमोल नाम से एक किस्म आती है संकर किस्म, उसको भी लगा सकते हैं। एक पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, ये सादी किस्म है, इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं लौकी की। करेले की संकर किस्म की बात करें तो एक पाली नाम से एक संकर किस्म आती है, बहुत अच्छी पैदावार देने वाली,
1: निजी कंपनी की है,
0: निजी कंपनी की, तो उसका भी उपयोग किसान भाई कर सकते हैं।
1: खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके लिए जो है जो पोषक तत्व है वो कैसे डालने चाहिए?
0: हाँ जी, सबसे महत्वपूर्ण बरसात के मौसम में खेत की तैयारी है, तो इसकी तैयारी हमें बरसात का इंतजार नहीं करना है, ये तैयारी हमने गर्मी के मौसम से ही शुरू कर देनी है। जैसे कि किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हमारी मिट्टी में नाना प्रकार के कीटाणु हैं, बीमारी पैदा करने वाले फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, तो हम क्या करते हैं, जब जून के महीने में काफी गर्मी पड़ती है तो उस मौसम में हम गहरी एक दो जुताइयां करते हैं इस तरीके से कि जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाए और ऊपर की मिट्टी नीचे चले जाए। उसका अभिप्राय ये होता है कि नीचे जो कोई कीटाणु से छुपे बैठे हैं बीमारी पैदा करने वाले, वो ऊपर आकर गर्मी से मर जाएं अपने आप ही। उसके बाद जो दूसरी बात मैंने कही कि जो हमारी क्यारी है वो जमीन से आधा फुट कम से कम उठी होनी चाहिए और खेत की साइडों में पानी की निकासी के लिए अच्छी नालियां बननी चाहिए ताकि पानी खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए। और जहां तक सब्जी के खेत की बात है और उसमें खाद प्रबंधन की बात है, तो सब्जियों में हम कहते हैं कि हमारे खेत में 10 क्विंटल तक जो है अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद एक कनाल में हमें डालनी चाहिए। और अगर हमारे पास केंचुआ खाद कुछ किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा 5 से 6 क्विंटल तक भी हो सकती है। जो कमर्शियल खेती करते हैं किसान भाइयों, तब आपको हम कहते हैं कि हमारे पौधों को तो 16 तत्व चाहिए हैं, तो हमें उस तत्वों को पूरा करने के लिए हमें NPK तो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए 12-32-16 खाद का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हर खेत का मिट्टी का परीक्षण होता है, उसके बाद खाद की सिफारिश की जाती है, लेकिन मोटे तौर पर हम कहते हैं कि गर्मियों की फसलों में हम 7-8 किलो 12-32-16 खाद एक कनाल में डाल दें तो हमारी गर्मी की सब्जियों के लिए ये पर्याप्त होती है। जैसे मैंने कहा 16 तत्व चाहिए हैं, तो कुछ सूक्ष्म तत्व भी चाहिए होते हैं, तो सूक्ष्म तत्वों के लिए भी एक एग्रोबिट नाम से एक खाद बाजार में भी आती है, कृषि विभाग में भी आती है, तो ऐसी एक कनाल के लिए 1 किलो अगर आप सूक्ष्म खाद के लिए जो एग्रोबिट नाम की खाद है उसका इस्तेमाल कर लें तो जो सब्जियों में हमारा रंग अच्छा आएगा, आकार अच्छा आएगा, उनका खुशबू अच्छी रहेगी, फ्लेवर अच्छा होगा, इसके लिए सूक्ष्म तत्वों की खाद भी डालना जरूरी है।
1: जी, तो ये मात्रा क्या रहती है डॉक्टर साहब?
0: मैंने तो कहा जैसे हर सब्जी का और हर खेत के लिए मिट्टी का परीक्षण करने के बाद ही मात्रा निर्धारित करनी चाहिए, लेकिन कई बार हम मिट्टी का परीक्षण करवाने में इतना टाइम लग जाता है या उसका रिजल्ट आने में इतना टाइम लग जाता है कि हमारे खेत की बिजाई का समय हो जाता है, तो हम मोटे तौर पर ये कहते हैं कि 1 कनाल में 6 से 8 किलो, आपको लगता है कि उस खेत की अच्छी उपजाऊ क्षमता है तो आप 6 किलो डालिए, अगर थोड़ी सी कम लगता है तो आप उसमें 8 किलो तक 12-32-16 खाद का इस्तेमाल करें, और जैसे एग्रोबिट या जो सूक्ष्म तत्वों वाली मैंने कहा खाद है उसको 1 किलो प्रति कनाल की दर से आप इस्तेमाल कर सकते।
1: तो ऐसे में जो है बिजाई का तरीका कार क्या होना चाहिए, पंक्तियों में किस तरह से होनी चाहिए, दूरी कितनी होनी चाहिए पंक्ति से पंक्ति, और साथ ही जो है बीज से बीज की दूरी जो है?
0: तो ये जैसे भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी में हम 1.5 से 2 फुट तक का फासला रखते हैं, और गर्मी में हम 1.5 फुट का रखते हैं, बरसात में उसको 2 फुट कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बरसात में उनकी जो ग्रोथ है पौधों की बहुत ज्यादा हो जाती है और काफी लंबे और फैलते भी हैं, तो 2 फुट की दूरी पर कतार से कतार की दूरी भिंडी में रखते हैं। और जहां तक पौधे से पौधे की बात है तो 10 से 15 सेंटीमीटर का हम फासला जो है प्रति पौधे में रखते हैं। इसी तरह अगर कद्दू वर्गीय फसलों की बात करें तो हम क्या करते हैं कि 1-1 मीटर पर 1 फुट ब्यास का एक गोला सा बना लेंगे और उसमें 3-3 बीज लगा देते हैं, 1-1 मीटर के फासले पर ये गोला बनाएंगे और 3-3 बीज लगा देंगे, और फिर उन बीजों से को हम वहां पर उगने देते हैं, उस वहीं पर खाद मिलाएंगे, वहीं पर, क्योंकि बाकी जगह पर खाद मिलाने का कोई फायदा नहीं है, वो खाद घास के लिए होगी, तो इसलिए हम उसी जगह खाद मिलाएंगे। और क्या ध्यान रखना है बेलदार फसलों में किसान भाइयों, बरसात के मौसम में उनको एक छतनुमा एक ढांचा आपको बनाना पड़ेगा जिसमें वो बेलें चढ़ जाएं। अगर वो आप रस्सी से बना लें, नाइलॉन की सूतली से बना लें, अगर कोई बांस के डंडे लगाकर बना लें, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके बगैर आपकी जो बरसात के मौसम में बेलदार फसलें नहीं चलेंगी, जो फल मिट्टी के संपर्क में आएगा वो सड़ जाएगा, इसलिए उसका उस छतनुमा ढांचे के ऊपर चढ़ना बहुत आवश्यक है। हमारा टमाटर

0: पांच पंक्तियां आ जाएंगी, उस तरीके से भी लगाया जा सकता है। और अगर आप हर पंक्ति में उसकी क्यारी बनाना चाहते हैं या उसको क्या कहते हैं मेड़ बनाना चाहते हैं या बीड बनाना चाहते हैं तो वैसा भी किया जा सकता है। तो दोनों तरीके किए जा सकते हैं। आप डेढ़ से दो मीटर जो चौड़ाई की क्यारी बनाएं तो आपको मेहनत कम पड़ेगी। हर एक पंक्ति के लिए एक बीड बनाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन उसमें पानी की निकासी ज़्यादा अच्छी होती है। बरसात के मौसम में जो खरपतवार हैं बहुत ही अधिक मात्रा में खेत में आते हैं और हमें लगता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आपको मैं बताऊं ये हमारे कीड़े मकोड़े या बीमारियों से ज़्यादा नुकसान हमारी फसल को पहुंचाते हैं, लेकिन वो देखने में नहीं आता। लेकिन जब हम फसल को हार्वेस्ट करते हैं निकालते हैं तब हमें लगता है कि इसकी वजह से 30-40% तक हमारा नुकसान कई बार हो जाता है। तो खरपतवार प्रबंधन के मौसम में बड़ा जरूरी है। आजकल आप जानते हैं किसान भाइयों की आजकल लेबर की समस्या भी आप लोग फेस करते हैं, तो कई बार हमें लेबर नहीं मिलती है तो वो घास निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम रासायनिक तौर पर भी इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्यतः हम सब्जियों में दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है पेंडीमिथालिन, दूसरी का नाम है एलाक्लोर, और एक अन्य करना चाहें तो बेसालिन नाम की एक दवाई हम इस्तेमाल करते हैं। और इन दवाइयों का अगर बीज वाली फसल है तो उसको बिजाई के 48 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करना होता है में से किसी को भी। और अगर ट्रांसप्लांटिंग या मतलब जिसकी रोपाई हम करते हैं जैसे टमाटर बैंगन है तो इसके लिए हम एक दिन पहले स्प्रे करेंगे और उसके बाद एक दिन बाद इसका रोपाई करेंगे हम फसल की।
1: डॉक्टर विशाल, आपने हमारे सुनने वाले किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी किसान साथियों, तुहां सुनिए बड़ी कमे दी गलबात, कने उम्मीद करनी है भाई तुहां भी जियां इन्हां नाल गलाया भाई बरसाती कियां साग सब्जियां लगानियां न, कियां तिना ध्यान रखना है, तो तुहां जरूर इन्हां दे कहे अनुसार भी करी के दिखने हो। दिखा जलू विशेषज्ञ टियाले पर पुज्जदे ना तो यह भी बड़े अनुभवां ले करी आउंदे, कने इन्हां दा बोलना कोई इयां नहीं हुंदा भाई जे कई वारी हुंदा भाई हां सोचदे भाई चलो अहां दे दे तुहां जानकारी, तो इस विच कोई शक सुबह रह भी जांदी।
3: जी जी बिल्कुल, कने दिखा सानू तां भाई इन्हां दे जिहड़े तजर्बे हन, अगर अपने तजर्बे कने इन्हां दे मलाई के अहां खेतीबाड़ी करगे तां अहां होर भी उन्नति अपनी खेतीबाड़ी च करी सकदे तां साडा किसान जिहड़ा है सभी कड़िया है, पढ़िया घट होगा पर कड़िया ज़्यादा। तो अजकल तुहां दिखा भी जड़ियाँ भिंडिया की फसल अजकल साढ़े किसान साथियों घर खूब भिंडियां निकला कर दियाँ, कद्दू करेले घीए डानी सब कुछ चलिया, तो क्या नज़ारेदार ताज़ी सब्जी खा दे कन ताज़ा सब कुछ। हूँ तो हाँ साढ़े किसान साथियों लेके चला कांगड़ा सब्जी मंडी दी
2: जी, तो दिखा तो हाँ सब्जियों की गल कराई तो मैं बोले भाई देर नहीं लगानी, कने मैं जलू बे टियाले पाहे लगी ना होना
3: जी जी,
2: तो हाँ बेचारे बुजुर्ग बैठे हो भाई बंधु बैठे हो जिन्हें घरे दियाँ देसी सब्जियां लगाई है ना तो सभी बैठे होते ना बेचारे बेचा
3: दे कर दे जगह जगह है ना जी,
2: हाँ तो तिने भी भाव पता होना चाहिए। तो आज कांगड़ा सब्जी मंडी विच आलू रहा 10-20 रुपये, प्याज 35-36, टमाटर तुहाड़ा रहा 20-40 रुपये, लसुण 160-170, अदरक 200-220 रुपये, शिमला मिर्च 60-65, अरबी 25-30, खीरा 20-40 रुपये, मटर 100-120 रुपये, फूल गोभी 40-50 रुपये, बंद गोभी 20-25, बैंगन 20-25, कद्दू 18-20 रुपये, मूली 20-25, कने पालक 32-35, हरी मिर्च 28-30 रुपये, कने धनिया जड़ा 120-180, तोरी 40-45, कटल 25-30 रुपये, करेला 20-25, फ्रास बीन 60-65, कने गाजर 25-30, मशरूम रे 170-180, गंडियाली 33-40 रुपये, कने फलों की गल करिए सेब रे अज 50-200, केला 50-60 रुपये प्रति दर्जन, अनार 140-150, कने अनानास 35-40, अमरूद 80-90, मसम्मी 60-70, पपीता 50-60, खरबूजा 35-40, कने लीची 150-200 रुपये, अंबा की गल करिए अंब रहा 100-110, अंब तोता रहा 50-60 रुपये, अंब दशहरी 40-60 रुपये, नींबू 60-65, कने नाशपाती 120-140 रुपये, कने माल्टा रहा 100-110 रुपये।
3: जी तो ये तो थे किसान साथियों कांगड़ा सब्जी मंडी दे भाव, कने हुण इसते बाद भई लोकगीत की तरफ चल दे, कने सुन दे प्यार दिया लोकगीत।

0: किसान साथियों, इसी प्यारे दे लोक गीत कन्नै खेतीबाड़ी कार्यक्रम का समय इत्थे संपन्न होआ करदा है। संपन्न करने ते पहले तुहानू दसीए, इस कार्यक्रम च सांझो तकनीकी सहयोग दिता बिपिन शर्मा ने
1: जी, कन्नै हुण असां दुनी जो दिया अनुमति।
0: अच्छा जी।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने BBMB से हिमाचल के लंबित वित्तीय अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का किया आग्रह। प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सतत विकास को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कहा, नशा मुक्त भारत 2029 का रोड मैप, युवा पीढ़ी को नशे के अभिशाप से बचाने का राष्ट्रीय संकल्प। सोलन जिला परिषद के चुनाव में भाजपा की कुमारी शीला अध्यक्ष और पंकज शर्मा उपाध्यक्ष चयनित, भाजपा नेताओं ने जताई प्रसन्नता। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने PM श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई में कबड्डी खेल छात्रावास का किया लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB से हिमाचल प्रदेश के लंबित वित्तीय अधिकारों और बकाया राशि की वसूली के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने आज इस मामले को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से फोन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर हिमाचल प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब हरियाणा सरकार BBMB से संबंधित अपने हिस्से के बकाया भुगतान के संबंध में स्पष्ट सहमति व्यक्त करेगी और सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र दायर करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 वर्ष पूर्व के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद हिमाचल पिछले एक दशक से अधिक समय से अपने हिस्से की 13,066 मिलियन यूनिट बिजली और उससे जुड़े वित्तीय लाभों से वंचित है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर हरियाणा और पंजाब सरकार से चर्चा करेंगे और हिमाचल प्रदेश के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण व समाधान के लिए आवश्यक पहल करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज शिमला में ऊर्जा विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग कड़छम जलविद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि इसे अप्रैल 2027 तक शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पावर हाउस का करीब 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 1,579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। इससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष करीब 900 करोड़ रुपए का योगदान मिलने का अनुमान है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला के सिविल अस्पताल हरोली में आज लगभग 8 करोड़ 42 लाख रुपए

0: लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों वाले अतिरिक्त भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भवन का निर्माण कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर, आधुनिक और अधिक सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत नशा मुक्त भारत 2029 का रोड मैप केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि देश की युवा पीढ़ी को नशे के अभिशाप से बचाने का राष्ट्रीय संकल्प है। राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये अभियान पूरे देश के लिए तैयार किया है, जो ये दर्शाता है कि सरकार युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र की इस नीति को पूरी गंभीरता के साथ अपनाना चाहिए और उन्होंने नशा मुक्त भारत के रोड मैप को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का सुझाव भी दिया।
1: जो रोड मैप तैयार किया गया है, जहां सभी राज्यों को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार भी इसको गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट करे। और ये नशा जो है, ये हमारे देश के नौजवानों पर सीधा अटैक है। तो ये जो नशा है, ये आए दिन परिवारों को उजाड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार का ये अभियान है, ये लड़ाई केवल कानून के बल पर नहीं, बल्कि समाज, परिवार, शिक्षा संस्थान और सरकारों की संयुक्त भागीदारी से ही जीती जा सकती है। भारतीय पार्टी ये जो निर्णायक लड़ाई है नशे के खिलाफ, इसको लड़ने के लिए बिल्कुल संयुक्त रूप से तैयार है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की या किसी विशेष दल की ना रहकर, ये सभी राजनीतिक दल हो, सभी सामाजिक संगठन हो, ये सबको लड़ना पड़ेगी।
0: राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विशेष इकाई या क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने को लेकर वे जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन जिला परिषद के चुनाव आज सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें भाजपा की कुमारी शीला को अध्यक्ष और पंकज शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान भाजपा के जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे, जबकि कांग्रेस के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये परिणाम केवल जिला परिषद का चुनाव नहीं, बल्कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का स्पष्ट संकेत है। वहीं सोलन जिला परिषद में भाजपा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने जाने पर सांसद सुरेश कश्यप ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस जीत से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जनता निराश है।
2: जीत का यह क्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है। अभी तक जो 7 जिला परिषद के नतीजे आए हैं, उसमें 6 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, अब 7वीं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक कब्जा हुआ। ये जो जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। और जिस प्रकार से 3.5 सालों में इस सरकार की जो नाकामियां रही, वो आज उजागर हो गई है।
0: बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में किन्नौर जिला में करीब 800 निर्धन व उपेक्षित वर्गों के लोगों को भू पट्टे प्रदान किए गए हैं, जिससे उन्हें जमीन का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने आज कल्पा विकासखंड की कोठी और पूर्वनी पंचायतों में जनसमस्याएं सुनी और इनका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सिरमौर जिला की पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई में आज छात्रा कबड्डी खेल छात्रावास का लोकार्पण किया। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस छात्रावास के आरंभ होने से क्षेत्र की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शिलाई में ही बेहतर प्रशिक्षण व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के आधार को सुदृढ़ करने के साथ साथ युवाओं को नशे जैसी बुराई से

0: हटाने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने आज राजकीय महाविद्यालय सोलन में डिजिटल पुस्तकालय के शुभारंभ अवसर पर कहा कि युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए नशा मुक्त हिमाचल अभियान आरंभ किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों विशेषकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शांडिल ने कहा कि इस पुस्तकालय के माध्यम से महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण और समृद्ध होगा।
1: सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में विशेषकर वैसे तो सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का प्रौद्योगिकी का शिखर पर जाना और बच्चों के लिए कैसी सॉफ्टवेयर ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो उनको डिजिटली अवेलेबल हो, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ब्रेक थ्रू है टेक्नोलॉजी की और बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हो रही है। मेरा मानना है कि इसी के साथ साथ हमें बच्चों का जो कल का भविष्य है उसको भी ध्यान में रखना है। बाकी डिजिटल लाइब्रेरी का बहुत ही बहुत स्वागत है। ज्ञान तो जितना अर्जन हो और जिस धीरे से हो वो बहुत अच्छी बात है।
0: राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और हिमाचल प्रदेश में उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। हर्ष महाजन ने बताया कि केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से देश के करोड़ों गरीब व जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार की लापरवाही के चलते इसका लाभ आम लोगों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित की योजनाओं में बाधाएं उत्पन्न कर रही है और जनता पर लगातार नए आर्थिक बोझ डाल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीबीएमबी से हिमाचल के लंबित वित्तीय अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का किया आग्रह। प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सतत विकास को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कहा, नशा मुक्त भारत 2029 का रोडमैप, युवा पीढ़ी को नशे के अभिशाप से बचाने का राष्ट्रीय संकल्प। सोलन जिला परिषद के चुनाव में भाजपा की कुमारी शीला अध्यक्ष और पंकज शर्मा उपाध्यक्ष चयनित, भाजपा नेताओं ने जताई प्रसन्नता। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई में कबड्डी खेल छात्रावास का किया लोकार्पण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के आंगनवाड़ी से स्थापित क्रैच केंद्रों में क्रैच कार्यकर्ताओं और क्रैच सहायिकाओं के पदों को भरने हेतु सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्रैच कार्यकर्ताओं और क्रैच सहायिकाओं को प्रतिमाह सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर मानदेय देय होगा। मानदेय की यह दर क्रैच कार्यकर्ताओं के लिए 5,500 रुपये प्रतिमाह व क्रैच सहायिकाओं के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह है। पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार से हैं। इन पदों हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र है। आवेदक की आयु, विज्ञापित करने की तिथि अर्थात 24 जून 2026 के दिन, 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो। अभ्यर्थी संबंधित पालना क्रैच केंद्र आंगनवाड़ी सह क्रैच केंद्र के

0: संग्रहण क्षेत्र यानी फीडिंग एरिया की निवासी हो व उसका परिवार संबंधित पालना क्रैच केंद्र आंगनवाड़ी सह क्रैच केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज परिवारों की सूची में शामिल हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक ना हो तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार नायब तहसीलदार कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। क्रैच कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जबकि क्रैच सहायिका के पद हेतु आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इन पदों को भरने हेतु प्रक्रिया सूचना जारी होने की तिथि से प्रारंभ हो जाएगी तथा इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण के साथ दिनांक 14 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म लैला मजनू से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म वो कौन थी से। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, संगीत था मदन मोहन का और गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने। कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए ये पंजाबी गीत जिसे गाया है ज्योति तंगड़ी ने।

हीर रांझा इस फिल्म में लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत। संगीत है मदन मोहन का और गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशगान, और कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत हमने लिया है फिल्म उरी से। इस देशभक्ति गीत को गाया है जस्सर देसाई ने।

कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत हमने लिया है फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से। इस देशभक्ति गीत को गाया है सोनू निगम और हरी हरण ने।

0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
4: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
5: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
6: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
5: Other operating income is not included.
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात $232 अरब से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
7: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
8: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब

उनकी फ़िल्मों की बात करें तो उनमें शारदा, अनोखा प्यार, आवारा आदि कई फिल्में हैं। लता मंगेशकर, मुकेश, तलत महमूद जैसे गायकों को उन्होंने ब्रेक दिया। सुरैया और मीना कुमारी के लिए भी गानों में उन्होंने संगीत दिया।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए ज्वाला प्रसाद को।

श्रोताओ, ये लोकगीत आपने सुना मान सिंह का गाया हुआ। FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम।

पसंद आपकी गीत हमारे, जिस में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01892224391। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 01892224391। और जो फिल्में हमने रखी हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। फिल्मों के नाम हैं एक मुसाफिर एक हसीना, गंगा जमुना, घातक गुमराह, हमराज, हरे रामा हरे कृष्णा, हीरा पन्ना, हीरो, हम दिल दे चुके सनम, हम दोनों, इजाज़त, जब प्यार किसी से होता है जानवर, जुल थीफ, जूली, मेरा गांव मेरा देश, मेरे हमदम मेरे दोस्त और वीर सारा। तो लेते हैं कार्यक्रम की पहली फ़ोन कॉल। हेलो, फ़ोन लाइन कट चुकी है। और हम श्रोताओं को बता दें कि आप जब भी हमें फ़ोन करें तो सिग्नल में रहकर ही बात करें। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे, और हमें श्रोता फ़ोन कर सकते हैं और हम कहना चाहेंगे कि सिग्नल में रहकर ही बात करें। तो जब भी आप हमें फ़ोन करें तो पहले सिग्नल में कहीं एक जगह बैठकर ही बात करें और तभी हमें फ़ोन करें। हेलो, फ़ोन लाइन कट जा रही है, और तब तक आपको सुनाते हैं घातक फिल्म से ये गीत।

हेलो, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। श्रोता हमारे हमें यहाँ लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिग्नल की खराबी के कारण फ़ोन लाइन बिजी आ रही है और या तो फ़ोन कट जा रहा है। कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए जानवर फिल्म से ये गीत।

0: इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।
1: तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो।
0: हेलो,

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ नमस्कार जी
0: नमस्कार जी, आप सिग्नल लग गया, बोलिए। हेलो
1: सर, मैं कश्मीर वारताल से बोल रहा हूँ।
0: जी, कश्मीर से बोल रहे हैं जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्म का नाम बता दें पहले। हाँ
1: सर मेरा देश मेरा गांव मेरा देश का ना गाना सुनना,
0: जी
1: आया आया अटरिया पे कोई चोर।
0: ठीक है सर जी, और बताइए क्या करते हैं आप।
1: सर मैं तो वैसे मानसर पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अमरनाथ यात्रा पे आया हूँ।
0: अच्छा, तो अभी कहाँ
1: तो
0: पहुँचे हैं
1: अभी
0: आप?
1: मैं लंगर है हमारा लगा मुकेरिया का, वहां ना मैं सेवा करता हूँ 1 महीने के लिए। तो
0: जी,
1: मैं जहाँ मैं यही काम कर रहा हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया है, आप लंगर सेवा कर
1: हाँ
0: रहे हैं और अमरनाथ
1: जी
0: यात्रा में।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: सुनवाते हैं आपको मेरा गांव मेरा देश फिल्म से आपकी पसंद का ये गीत।
1: सर, कैसा मौसम है धर्मशाला का?
0: सर बारिश है लेकिन थोड़ी सी उमस है, गर्मी है।
1: अच्छा, अब थोड़ी इधर भी गर्मी हो गई है, लेकिन फिर भी सर्दी है, 10 टेम्परेचर है अभी भी, तो
0: जी, वो तो ठीक है
1: बढ़िया मौसम है।
0: जी,
1: तो बाकी ठीक ठाक है सब, सुना
0: ठीक है
1: दो
0: जी।
1: गाना।
0: कार्यक्रम में फोन किया
1: धन्यवाद,
0: आपका, धन्यवाद जी।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी। नाम बताइए अपना।
1: जम्मू से केशव शर्मा। ठीक
0: ओ शर्मा जी, क्या हाल हैं आपके?
1: ठाक सर जी, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है जम्मू में,
0: जी
1: आपको तो मज़ा होगा।
0: यहाँ भी सर गर्मी हो गई है, बारिश हो जाती
1: अच्छा,
0: है तो ठीक है।
1: तो मैं सर पुणे गया था, उधर तो 8 दिन 10 दिन रह के आया हूँ, तो बातचीत रही 8-7 दिन। फिर
0: अच्छा
1: तो दो
0: अच्छा
1: दिन मौसम खुश रहा।
0: जी, फ़ोन लाइन कट चुकी है और हमारा श्रोताओं से निवेदन रहेगा कि पहले जैसे फ़ोन मिलता है वो फिल्म का नाम बता दें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे, और हम एक बार बता दें अपने स्टूडियो का नंबर 01892224391। लेते हैं कार्यक्रम की अगली फ़ोन कॉल। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो हेलो, आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं है, तो दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हमारा श्रोताओं से निवेदन रहेगा कि जब भी वो फ़ोन करें तो सिग्नल में रहकर ही बात करें। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01892224391। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 01892224391। और एक फ़ोन कॉल आ रही है तो लेते हैं अगला फ़ोन कॉल। तो तब तक हम आपको सुनवाते हैं वीर ज़ारा फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत। इस गीत को लिया है हमने फिल्म हीरा पन्ना से।
1: बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत

0: हेलो।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, फिल्म का नाम बता दो पहले। नहीं,
1: जम्मू से केशव शर्मा सर जी, उसका सुना दो। हीरो फिल्म का गाना हो गया नहीं अभी?
0: अभी नहीं हुआ।
1: हीरो फिल्म का सुना दो। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, प्यार करने वाले कवि दस्ते ने। हाँ
0: हाँ जी, और आप बताइए अपने बारे में।
1: सर जी, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, तकरीबन 5 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। बाकी घर का काम देखते हैं,
0: जी, बहुत ही बढ़िया है।
1: तो बाकी मेरे साथ में साथी हैं। मैडम है मेरी, श्रीमती सुषमा रानी है,
0: जी
1: बच्ची है मेरी अंशु शर्मा, साक्षी
0: जी
1: शर्मा, भाई सतपाल शर्मा है, और
0: जी
1: मेरे दोस्त हैं यूपी से विजय पांडे जी,
0: जी
1: और मथुरा से हैं शारदा प्रसाद जी,
0: जी
1: और डोडा से हैं पुष्कर नाथ शर्मा जी, पंछी राम शर्मा और रिंकू दीदी।
0: जी कार्यक्रम में फ़ोन किया आपका धन्यवाद। और आप पहले भी फ़ोन करते रहते
1: और
0: हैं।
1: सर, कट जाता है फोन तो, चलता रहता है लेकिन आवाज़ कट जाती है। फोन तो
0: जी
1: चल रहा था लेकिन आवाज़ कट
0: जी
1: जाती
0: जी
1: है।
0: आज बहुत ही
1: तो
0: प्रॉब्लम
1: सर
0: हुई है।
1: एक
0: हाँ जी
1: रिकॉर्डिंग वाला प्रोग्राम भी जरूर रखना, रिकॉर्डिंग जिसमें एडवांस रिकॉर्डिंग हो जाए, बाद में गाने सुनाए, ये प्रोग्राम जरूर रखना
0: वो
1: चाहिए।
0: रिकॉर्डिंग का पहले रखते थे, कोई नहीं, उच्च अधिकारियों तक आपकी बातचीत बात माफ़ कीजिए, बात पहुंचा दी जाएगी।
1: चलो हो
0: ठीक
1: जाए, वो थोड़ा अच्छा रहता है मेरे ख्याल में।
0: ठीक है जी, आपका आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद। सुनवाते हैं हीरो फिल्म से ये गीत।
1: ठीक है सर, थैंक यू।

0: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष

0: के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment,